मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन शुभ हो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की

विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

प्रभु के प्रति प्रेम की दीवानगी ऐसी होती है कि जीवन का सारा सुख वैभव इसके सामने तुच्छ लगने लगता है, और तुच्छ है भी। बस उस परम पिता का सानिध्य मिल जाए, भले ही वो हमें दास के रूप में क्यों ना स्वीकार करें, उसकी हम पर कृपा ही होगी।

हमारा हृदय ही प्रभु का मंदिर है। सत्कर्म और पवित्र भावना से की गई भक्ति से ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ईश्वर के दर्शन से जो परम सुख मिलता है उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इसलिए सच्चे मन से ईश्वर का सुमिरन करें।

भक्ति मार्ग पर चलने से हमें पर पीड़ा का एहसास होता है और हमारा मन जब दूसरों के दुखों को गहराई से महसूस करने लगे तो ये मानकर चलिए कि हमारा मार्ग सत्य का मार्ग है, ईश्वर द्वारा दिखाया गया मार्ग है। बस यूं ही चलते रहिए और प्रभु का सुमिरन करते रहिए।

सत्संग करने से हमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु से मिलने वाला ज्ञान हमारे लिए एक ऐसा संबल होता है जिसके सहारे हम हर परीक्षा की घड़ी को सहज ही पार कर सकते हैं। इसलिए गुरु के प्रति हमेशा निष्ठावान रहें। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताएं।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने देशभक्तिपूर्ण रचना समूह स्वर में, उसके बाद चित्रा सिंह, अनूप जलोटा, भूपेंद्र सिंह और श्यामा चित्तार के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी भोपाल है।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। इसमें स्वर सुरेश वाडकर और ए हरिहरन के थे। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी भोपाल है। अब आप सुनेंगे चिंतन। आज का विषय है प्रेम। आलेख है डॉक्टर सुरेश सम्राट का।
1: जीवन के समस्त सुखद एहसासों का नाम ही प्रेम है। प्रेम श्रेष्ठतम मूल्यों, व्यवहारों और प्रवृत्तियों के समवेत स्वरूप का एकमात्र पर्याय है। सुख, आनंद, सहिष्णुता और सद्व्यवहार का मार्ग प्रेम से ही शुरू होता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ शांति और संतोष का स्थायी आवास होता है। प्रेम से सहज सरल कुछ भी नहीं और प्रेम से महान भी कुछ नहीं होता। प्रेम के लिए न धन की जरूरत होती है न बल की। प्रेम की इस सहज सरल और सर्वव्यापकता के बाद भी जब कहीं प्रेम का अभाव दिखता है तब अचरज होता है। लेकिन यह भी सच है कि प्रेम उतना सुलभ भी नहीं रहा है जितना वह सहज है। उसकी इस दुर्लभता के पीछे वे कारण महत्वपूर्ण हैं जो व्यक्ति को प्रेम तक पहुंचने में अवरोधक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, असंतोष, बदले की भावना और असहिष्णुता जैसी प्रवृत्तियां ही वे अवरोधक तत्व हैं जो प्रेम को पाने और प्रेम देने के बीच रोड़ा बन जाते हैं। यों प्रेम के अनेक रूप बताए जाते हैं लेकिन उसका मूल तत्व एक ही है, परस्पर सद्भाव, समर्पण और सेवा। इसके अलावा आस्था, विश्वास, निष्ठा, सत्य और ईमानदारी सदैव इसके वाहक होते हैं। शुभ और मंगल कामना ही इसकी मूल सृष्टियां होती हैं। प्रेम के ये तात्विक अंश जहां भी असंतुलित और असंयत हो जाते हैं वहीं प्रेम की भावना नष्ट होने लगती है। दुर्भाग्य से वर्तमान जीवन शैली में प्रेम के अवरोधक तत्वों का प्रभाव और समावेश ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप प्रेम की पवित्रता भी प्रभावित है। यही वजह है कि प्रेम का शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर पाना अब दुर्लभ नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रेम मानव मन की कितनी सहज वृत्ति है इसकी व्याख्या कबीरदास जी ने बड़े ही सरल ढंग से की है। पोथी पड़े पड़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। कबीर ने प्रेम प्राप्ति का मार्ग भी दिखाया है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देई ले जाए। वस्तुतः प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, वह तो अपने आप को अर्पित करता है। प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का स्मरण है। प्रेम असीम विश्वास, असीम धैर्य और असीम बल है। वह आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है और इसीलिए प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही

0: मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। वस्तुतः जीवन में प्रेम का वही स्थान है जो शरीर में हृदय का। जब हृदय गति रुक जाती है तो शरीर भी छूट जाता है। इसी प्रकार प्रेम का अभाव होते ही जीवन खोखला हो जाता है। नीतिकारों ने भी कहा है कि प्रेम जीवन का प्राण है, जिसमें प्रेम नहीं वह केवल मांस से घिरी हड्डियों का ढांचा है। कबीरदास ने कहा है, जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जीवन में माधुर्य का रस घोलता है। जैसे मरुस्थल के सूखे हुए ठूंठ में कोपलें नहीं फूट सकती, वैसे ही प्रेम रहित मनुष्य का जीवन कभी भी फल फूल नहीं सकता। प्रेम ही जीवन का आंतरिक सौंदर्य है। प्रेम के अभाव में सभी बाहरी सौंदर्य अर्थहीन हो जाते हैं। जिसका जीवन प्रेम के रस में पगा होता है, वह संसार में कहीं भी क्यों न चला जाए, उसे कोई संकट नहीं आता। सामाजिक चेतना में भी प्रेम की विशिष्ट भूमिका होती है। परस्पर प्रेम के बल पर समाज में समरसता लाई जा सकती है। जिस समाज और जीवन में प्रेम होता है, वह स्फूर्ति से भरा रहता है। इसीलिए जो दूसरों के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है, वह सर्वत्र आदर पाता है, और इसके विपरीत जो दूसरों से घृणा करता है, वह स्वयं भी तिरस्कृत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस सत्य को यूँ व्यक्त किया है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है व्यावसायिक डेयरी फार्म के लिए पशुओं का चयन। जानकारी देंगे डॉक्टर गोपाल राय बंसल।
2: आज की चर्चा में हम बात करेंगे व्यावसायिक डेयरी फार्म के लिए सही नस्ल के चुनाव के बारे में। जैसा कि सही नस्ल का चुनाव हम कैसे करें, यह एक विषय ऐसा है जिसमें कि हमने सही नस्ल का चुनाव किया तो हमारा व्यावसायिक डेयरी फार्म अच्छे से चलेगा और हमें आर्थिक सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा हमें नुकसान होने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अच्छी नस्ल का चुनाव करें। सर्वप्रथम बात आती है किस नस्ल का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, साहिवाल, थारपारकर, गिर, यह प्रमुख नस्लें हैं जो दूध ज़्यादा देती हैं। इनके साथ साथ रेड सिंधी नस्ल भी है जिसका दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें संकर नस्ल का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि करन फ्राइस। संकर नस्ल की विशेषता यह होती है कि उसका दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नस्ल का चुनाव किस तरह से करना चाहिए। पहली बात, नस्ल कौन सी होना चाहिए जो मैंने आपको बताई, साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, करन फ्राइस। अब बात आती है कि नस्ल का चुनाव कैसे करना चाहिए। नस्ल का चुनाव करने के लिए सर्वप्रथम हम या तो बछड़ों से चुनते हैं या फिर पशु मेला से पशुओं को चुनते हैं। यह एक कला है वास्तव में, जिससे कि हम पशु नस्ल का चुनाव अच्छे से करते हैं। कुछ ही व्यक्तियों को यह कला आती है, पर जो पशुपालक भाई हैं उन्हें यह कला आना चाहिए। जब भी किसी पशु मेले से पशु को खरीदा जाता है तो उसकी नस्ल की विशेषताओं और दुग्ध उत्पादन की क्षमता के आधार पर परखना चाहिए। पशु की वंशावली एवं डेयरी फार्म का इतिहास दोनों देखना चाहिए। दुधारू गायों का अधिकतम उत्पादन प्रथम 5 बार प्रजनन के दौरान होता है, लेकिन आपको प्रथम या द्वितीय ब्यात के पश्चात ही पशु खरीदना चाहिए। अगर आपने 5वीं या 6वीं बार की ब्यात का पशु खरीदा तो आपको 2 या 3 ब्यात ही दूध मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको आर्थिक नुकसान होगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि आप प्रथम या द्वितीय ब्यात के पशु को ही खरीदें। उनका लगातार दूध निकालना चाहिए, जिसके आधार पर उसकी दूध देने की क्षमता का आकलन किया जा सके। जो पशु को बेचने वाला व्यक्ति है, जब हम हरियाणा में पशु खरीदने जाते हैं तो वह लोग ये कहते हैं कि साहब आप सुबह का निकाल लीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह आ जाइए, आपको प्रलोभन भी देते हैं। लेकिन वह छोटा सा प्रलोभन आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। आपको चाहिए कि आप लगातार 3 से 4 बार दूध निकालें, सुबह शाम को, अगले दिन सुबह शाम को, और फिर उसका एवरेज निकालें, जिससे कि आपको हकीकत पता चल सके कि उस पशु

0: की दुग्ध देने की क्षमता कितनी है। अगर किसी वजह से गाय ने दूध नहीं दिया या पशुपालक बेचने वाले पशुपालक ने कुछ बहाना लगा दिया, तो आपको फिर नेक्स्ट डे और रुक करके और दूध की मात्रा आपको सही निकालना चाहिए। एक बात और, कोई भी आपको दूध की मात्रा स्वयं या अपने विश्वसनीय व्यक्ति से निकलवाएं, ऐसा नहीं कि उसी पशुपालक से निकलवा रहे हैं। कोई भी आदमी जो गाय से दूध निकालने में सक्षम है, उसे अपने साथ लेकर जाएं और कोशिश करें कि उस दौरान गाय नियंत्रण में रहे और अपने सामने खड़े होकर के उसका दुग्ध आप अपने निकलवाएं। कोई भी जानवर अगर हम खरीदते हैं तो पूरे वर्ष भर में कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, उसे हम अक्टूबर माह एवं नवंबर माह में खरीदना उचित होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब पशु ब्याता है उसके 10 दिन बाद या 15 दिन की उम्र पर ही पशु को खरीद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो महीने की ब्याह का पशु खरीद लिया। अगर हमने 2 महीने की ब्याह का पशु या 3 महीने की ब्याह का पशु खरीदा है, तो वह जो 3 महीने का दुग्ध है उसका आपका डायरेक्टली नुकसान होगा। इसलिए मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप प्रथम या द्वितीय ब्याह का पशु खरीदें। दूसरी बात, ब्याने के 10-15 दिन बाद ही पशु को खरीद लें। कृषि चर्चा संपन्न हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जरूरी सूचना। संजय कुमार, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त आसूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षतियों के जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रथ यात्रा, वाहन रैली, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रमों के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। सूचना समाप्त हुई।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना।

0: अपने व्यवसाय को दें नया आयाम। आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय संबंधं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्।

0: कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येते सह निम्नसदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8% किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीयसङ्घस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघः परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20-प्रति20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि

श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत थोड़ी ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में नगर निगम भोपाल द्वारा किए जा रहे काम और जन भागीदारी पर बातचीत होगी। नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से रीनीट एग्जाम और स्टूडेंट की तैयारियों पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर विक्रम सक्सेना और मेट्रोलॉजी दिवस पर अपने विचार साझा करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आयुष श्रीवास्तव।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आप सुनेंगे कलाकार कय्यूम मुनव्वर के स्वर में गजलें। 9:30 सुनिएगा प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। ठीक 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। 10:30 आनंद आप ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला का। इसमें पंडित SS गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन आप सुनेंगे, राग होगा अहीर भैरव। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय रहेगा खरीफ फसल में बुआई, पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह के ठीक 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा दिन के 12:00 और दोपहर 2:30। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2:00। दिन के 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का 7वां भाग। आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र के योगदान से दिन के ठीक 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेंगे।

सांध्यकालीन सभा में शाम के ठीक 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 और रात 8:15 पर।

सुर्खियों में रात 9:30 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात के ठीक 10 बजे आप सुनेंगे नाटक जिसका शीर्षक है क्या ऐसा होगा। इसके लेखक हैं श्रीमती मधु राजन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का। इसमें आप सुनेंगे पंडित एसएस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग होगा भोपाली। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक। नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रुपए की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक क्षेत्र सतत विकास में नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को भारत के व्यापक स्तर के साथ जोड़कर भविष्य के लिए भरोसेमंद वैश्विक समाधान विकसित कर सकते हैं। श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है और भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा करेंगे। भोपाल में हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी आधारित विकास को नई दिशा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल आयोजित मध्य क्षेत्रीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों और सुशासन के प्रयासों की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त की गई। प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित रहे ग्रामों के लिए 330 करोड़ रुपये लागत की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सड़क, पुल, मोबाइल टावर, नई सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश आज धान और गेहूं के उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है। कल भुवनेश्वर में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय खरीफ कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत की कृषि को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच

0: विषय विशेष क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष रोडमैप के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि
1: एक हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हमारे पास तो 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ छोटा किसान लैंड होल्डिंग का मैं तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए, जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। गौरतलब है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं होने से नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। नीमच और आगरमालवा में औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की सूचना दी गई है, लेकिन जिले में आमजन और मरीजों को जरूरी दवाइयां मिल सकें इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के कुछ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा भोपाल में भारत भवन में 27 मई से 2 जून तक सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत भवन में सदानीरा समागम का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के AI आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार यह 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। यह संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला में कल महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। माँ वाग देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि माँ वाग देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भीषण गर्मी और तेज लू की चपेट में है और इसका असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। कल प्रदेश में तेज गर्मी और लू जैसे हालात के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों को लू लगने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चली। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई को शासकीय ITI झांसी रोड में किया जाएगा। सतना के शासकीय ITI कॉलेज बिरला रोड में आज 11 बजे से 2 बजे तक युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कल डिंडौरी के विकासखंड अमरपुर में ग्राम नांदा में आयोजित क्षीरधारा ग्राम योजना शिविर में पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई। इंदौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 15,051 एक्सरे किए जा चुके हैं और TB के प्रिवेंटिव इलाज में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सिवनी में विगत 18 मई से जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। मैहर

उमरपाटन और रामनगर के 35 ग्रामों में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह आज खंडवा के ग्राम रोशनी में कृषि मत्स्य एवं पर्यटन के समेकित मॉडल का शुभारंभ करेंगे। नीमच कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मात्र स्वास्थ्य उपार्जन और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को नालसा और सालसा की विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर आरटीओ और जिला प्रशासन की टीम ने कल बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच के दौरान 8 बसों से 2,26,000 रुपये का जुर्माना वसूला। और झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश टुकाराम भरसट ने कल पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रुपए की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक कहार स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। श्रोताओं, आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो हर कामकाजी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और वो है काम और परिवार के बीच में संतुलन। सुबह ऑफिस की जल्दी, दिन भर काम का दबाव और शाम को घर की जिम्मेदारियां, अक्सर लोग सोचते हैं कि दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि बैलेंस बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और प्लानिंग चाहिए। सबसे जरूरी बात है समय का सही इस्तेमाल। दिन की शुरुआत में हमें अपने काम को तय कर लेना चाहिए, जरूरी काम पहले खत्म करें ताकि घर के लिए हम वक्त बचा सकें। दूसरी बात, काम और घर को अलग रखें, ऑफिस का तनाव घर तक ना लाएं और घर की परेशानियों का असर काम पर ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, परिवार को वक्त दें। सिर्फ साथ बैठना काफ़ी नहीं होता, उनसे बात करें, उनकी सुने, उनके साथ हंसें या फिर कहीं घूमने जाएं। छोटे छोटे पल ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। चौथी बात, ना कहना सीखें। हर काम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को संतुलित रख सकें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद के लिए भी वक्त निकालिए, थोड़ा वॉक कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, अपनी पसंद का कोई काम कीजिए, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। याद रखिए, काम ज़रूरी है लेकिन परिवार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। संतुलन ही जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाता है, तो आज से छोटा कदम उठाइए, काम और परिवार दोनों को बराबर अहमियत दीजिए।

विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगह से पकड़े गए आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएं, खतरनाक कुत्ते मार दें, कुत्तों के डर के बिना जीना सबका हक। देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया कि यदि जरूरी हो तो रेबीज से पीड़ित असाध्य रूप से बीमार या ज़्यादा आक्रामक और खतरनाक आवारा कुत्तों को दया मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि ये कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के नियमों के तहत पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की जांच और रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी।

और वहीं पेट्रोल डीजल अब 90 पैसे महंगे हुए। मध्य प्रदेश में पंपों पर डीजल की लिमिट तय हुई, एक बार में 200 से 300 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा और यदि लिया तो फिर मशीन लॉक हो जाएगी। इसके अलावा फल सब्जियां 10 से 15% तक महंगी होने की संभावना है। अब बात मौसम की। नौगांव 47 डिग्री के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। खजुराहो 46.4 डिग्री पर रहा। वहीं भोपाल में तापमान 46 डिग्री और रिकॉर्ड में 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में रात का तापमान भी पहली बार 30 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तीखी गर्मी पड़ने के आसार हैं। पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की बात करें तो ये देश का दूसरा सबसे और छठा सबसे गर्म शहर रहा है नौगांव। और वहीं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई अब जानकारी। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। भोपाल से 30 जून को रवाना होगा पहला जत्था। आगामी 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए बैंक और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन जारी है। जुलाई के अधिकांश स्लॉट लगभग भर चुके हैं, जबकि अभी अगस्त की उपलब्ध तिथियों में पंजीयन किया जा रहा है। और वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। परीक्षाओं का डेटा डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड करना होगा 30 जून तक। और वहीं यूपीएससी का बड़ा बदलाव, प्रीलिम्स के तुरंत बाद जारी होगी आंसर की। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा फैसला किया है। आयोग ने पहली बार ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। इस कदम को परीक्षा प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को समय रहते आपत्तियाँ दर्ज कराने का मौका देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो यदि समाचार पत्रों से सुर्खियां आप सभी के लिए, इसके साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म कालिया से। आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक आहर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जानकारियां मेट्रोलॉजी दिवस के बारे में, साथ ही हम करेंगे बातचीत री नीट एग्ज़ाम के बारे में और देंगे आपको जानकारी स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में।

0: श्रोताओं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 जारी है। ऐसे में नगर निगम भोपाल क्या कार्य कर रहा है और जन भागीदारी कितनी ज़रूरी है स्वच्छता को लेकर, इसके बारे में हमने अधिक बातचीत की है नगर निगम भोपाल की कमिश्नर संस्कृति जैन से।
1: मेरा पहला सवाल यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर वासियों की क्या कुछ भूमिका होती है?
2: देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण केवल नगर निगम के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के लिए एक गर्व का विषय है। हमारा शहर भोपाल देश के सर्वोच्च और सबसे सुंदर शहरों में आता है, जो सबसे सुंदर हमारे नागरिकों के द्वारा ही बनाए रखा जाता है। यदि हम चलते फिरते गलियों में कचरा ना करें, हम अपने कचरे गाड़ी में सेग्रीगेटेड यानी गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें, तो इससे हमें नगर निगम में को सफाई व्यवस्था बरकरार रखने में बहुत सहूलियत मिलती है। जब तक हमारे नागरिक हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे सुंदर शहर को और सुंदर नहीं बना पाएंगे।
1: मैम, और क्या कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर अभी हमें काम करने की आवश्यकता है?
2: जब हम घर के अंदर सेग्रीगेशन बहुत अच्छा करते हैं, हमारा गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट अलग अलग करके देते हैं, तो हम उससे कई सारे फायदे और भी ले सकते हैं, ताकि वो जो हमारा 3R का प्रिंसिपल है यानी रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, हम कचरे को बढ़ावा कम करें, हमें जितना हो सके हम उसका रियूज करें और उसको पुनः इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें। जो आज आपके काम का नहीं है वो किसी अन्य के काम का हो सकता है।
1: जन भागीदारी से आप क्या अपेक्षा समझती हैं, लोगों से क्या सहयोग प्रदान करना चाहेंगी?
2: देखिए, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हमारे शहर को साफ बनाएंगे और जिम्मेदार नागरिकों से ही हमारा शहर बनता है। भोपाल शहर की खूबी ही यही है कि हमारे नागरिक जागरूक हैं और इसीलिए हम एक स्वच्छ शहर की श्रेणी में आते हैं।
1: नगर निगम लगातार नए नए तरीके से लोगों को अवेयर कर रहा है, तो क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से?
2: देखिए, अलग अलग जगह हम बात तो कर ही रहे हैं। मैं हमारे यंग जनरेशन को ये भी कहना चाहूंगी कि वेस्ट से संबंधित आजकल बहुत सारी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपना व्यवसाय कचरे के ऊपर भी निर्धारित कर सकते हैं। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलते हैं उनसे कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और आजकल उनकी बहुत डिमांड है, तो इस सेक्टर को जरूर एक्सप्लोर करें, ये एक आजीविका का साधन भी बनेगा।
1: जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैम यहाँ निकल के ये आता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है वो शहरों को कैसे स्वच्छ बनाने के लिए कार्य कर रहा है और किस तरीके से पूरे देश को मोटिवेट कर रहा है?
2: देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण तो एक एग्जाम है, ये हमारी

0: परीक्षा है तभी पूरे देश को बताने के लिए कि हम कितना स्वच्छ शहर हैं और हम कितने जागरूक नागरिक हैं। पर स्वच्छता तो साल भर की 24 घंटे की एक हमारी प्रकृति में एक बदलाव की बात कर रहा है। हम जितनी भागीदारी दिखाएंगे उतना शहर हमारा साफ रहेगा। तो सर्वेक्षण तो अभी एक छोटी परीक्षा है, बट पूरे साल भर इस सफाई को बरकरार रखना हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: जी, अंतिम प्रश्न है मैम मेरा। बहुत सारे शहरवासी हैं जो आपकी बात आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से सुन रहे हैं, उन तक स्वच्छता और सर्वेक्षण से जुड़ी हुई और कोई ज़रूरी आप बात पहुंचाना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो वो क्या होगा?
0: देखिए, मैं बहुत ही लकी मानती हूँ अपने आप के लिए कि मैं भोपाल नगर निगम की कमिश्नर हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भोपालवासी हमारे शहर को साफ रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही उनकी जागरूकता और उनकी प्रतिबद्धता स्वच्छता की ओर जब तक रहेगी, तब तक हम अपने शहर को और सुंदर बना पाएंगे।
1: स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के ऊपर ये बातचीत आप सुन रहे थे भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से। इसी के साथ चलिए श्रोताओं, शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म गजनी से। आवाज़ है जावेद अली की।

0: श्रोताओं, घड़ी में 7:43 होने को हैं और अब कार्यक्रम में वक्त है अगली जानकारी का। री नीट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ऐसे में बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की है प्रोफेसर विक्रम सक्सेना से।
1: जैसा कि आप सबको पता है कि नीट इस बार दोबारा हो रहा है। 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी वो निरस्त कर दी गई है और अब री नीट 21 जून 2026 को होने वाला है। री नीट में कुछ बदलाव किए गए हैं नीट 2026 के कंपैरिजन में। जो पहला बदलाव है वो ये है कि समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब जो समय है वो 3 घंटे की बजाय 3 घंटा 15 मिनट होगा। यानी इस बार री नीट की परीक्षा

0: 21 जून को दोपहर 2 बजे से दोपहर 5:15 तक होगी। एनटीए ने यह घोषणा की है कि रीनीट के एडमिट कार्ड्स 14 जून तक बच्चों को मिल जाएंगे। प्लस एक नई चीज़ भी है कि यदि कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम सेंटर को बदलना चाहता है तो एनटीए एक स्पेशल विंडो भी देगी कि बच्चा अपने एग्ज़ाम सेंटर को बदल सकता है।
1: सर, जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी वो अपने मनोबल को कैसे बनाए रखें और कैसे तैयारी करें?
0: सारे बच्चे जिन्होंने नीट की परीक्षा 3 मई को दी थी, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा परिश्रम किया था, कई सारी रातों में जगे थे, दिन रात एक कर दी थी, और ऐसे में जब परीक्षा रद्द होती है तो मायूसी होती है और ये बहुत नेचुरल है। तो मेरे उन सारे बच्चों को कुछ टिप्स हैं जो बच्चे 21 जून को रीनीट की परीक्षा देने वाले हैं। आप सबसे पहले अपने आप को कहिए कि आप 100% प्रिपेयर्ड हैं। देखिए बच्चों, आप 3 मई के लिए, 3 मई के ही दिन 100% प्रिपेयर्ड थे। आप 100% प्रिपेयर्ड हैं, इसी बिलीफ से आप 21 जून की परीक्षा की तैयारी कीजिए। कुछ भी नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ाई की थी, जो नोट्स आपने बनाए थे, उन्हीं को रिवाइज कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो कुछ टेस्ट आप दे दीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करने के लिए जो भी आप टेस्ट दें वो टेस्ट आप एक्चुअल नीट के टाइम में ही दीजिए, यानी 2 से 5:15 के बीच में। घर पर आप दे रहे हैं तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा मत लीजिए, 2 से 5 के बीच में ही आप टेस्ट को दीजिए। इस दौरान अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जो आपने गलतियां की थी नीट वाले दिन, या जो गलतियां आपसे हो गई थी नीट वाले दिन, आप उन गलतियों पर वर्क कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है जो आप सबको मिली है और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए। मुझे पता है कि आप बच्चे दोबारा भी बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छे से कीजिए रीनीट 2026।
1: रीनीट एग्ज़ाम के ऊपर ये ज़रूरी बातचीत आप सुन रहे थे प्रोफेसर विक्रम सक्सेना से। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, आवाज़ है कुमार शानू की और अलका याग्निक।

0: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सर्च पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज 20 मई है और आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी यानी किसी चीज़ को मेजरमेंट करना या किसी चीज़ को मापना। क्या है इस दिवस का महत्व, इसके बारे में हमने अधिक बातचीत की है एक्सपर्ट से, जो हैं आयुष श्रीवास्तव।
1: तो मेट्रोलॉजी दो वर्ड से बना है। मेट्रो मीन्स मापक या मेजरमेंट से हम जोड़ सकते हैं उस चीज़ को, यानी कि हम लॉजी से अगर समझे तो बहुत सारे शब्दों में लॉजी है, जैसे एक विज्ञान, एक साइंस। तो मेट्रोलॉजी का एक फुल प्रूफ अगर हम मीनिंग निकाले जोड़ के, तो वो है मापन का विज्ञान। इसके अलावा अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस या इसके इसकी आवश्यकता कहाँ है रोज़मर्रा की जीवन में, तो अगर हम कुछ भी आंकड़ों से रिलेटेड अगर बातें करें रोज़, तो उसमें हर जगह मापक है। जैसे आप मान लीजिए दूरी की बात करें, उसके अलावा आयतन या द्रव के जो कैपेसिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए हम लीटर या मिलीलीटर यूज़ करते हैं। दूरी के लिए हम मीटर, किलोमीटर, छोटी यूनिट्स में हम मिलीमीटर पे आ जाते हैं, सेंटीमीटर पे आ जाते हैं। तो ऐसे ये जो जितने भी हमारे मापक रहे हैं, ये हमारे आज जीवन के हिस्से बन चुके हैं, अहम हिस्से बन चुके हैं। बिना इन मापकों के हमारा जो कथन है, हमारे जो वार्तालाप है, जो हमारा जो समझ है दुनिया को लेके और किसी भी चीज़ को लेके, वो अधूरी है। जैसे अगर एक ज़िले, एक कस्बे से लेके दूसरे एक डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचते, हम मीटर किलोमीटर में आ जाते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए हम मानते हैं और हम समझते हैं कि चाहे वो व्यक्ति विज्ञान परिपेक्ष से सोचे या अपने सोसाइटल पर्सपेक्टिव से सोचे, उसको मेजरमेंट या मापक का जो इम्पोर्टेंस है उसको पता होना चाहिए। और सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, उसको उसका संज्ञान मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर यूनिट या किसी विशेष मापक का मुझे अगर जानकारी नहीं है, तो उसको लेनी चाहिए।
0: विकासशील भारत के अंदर यदि हम देखें तो मेट्रोलॉजी जो होती है उसकी आवश्यकता क्या है और ये कैसे हमें सपोर्ट करता है?
1: तो अगर हम इसमें मेजरमेंट की बात करें या विज्ञान की बात करें, मापक के विज्ञान की, अगर मुझे एक छोटे से समुदाय है, कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं, सेटअप करना है कहीं पर एक छोटे एरिया में, मापक का इस्तेमाल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मुझे छोटे से जगह पे बहुत अच्छा सेटअप करना है रेसिडेंशियल एरियाज़ का, या मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, या मेट्रो की हम बात करें, जैसे आप, हम भोपाल से हैं तो भोपाल में अभी प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है मेट्रो का, तो उसमें उन्होंने बहुत

0: अच्छे से ध्यान रखा है कि जो आम जनता है उसको परेशानी ना हो। तो उसमें उन्होंने मेजरमेंट का खास ख्याल रखा है कि कितने विड्थ की रोड को हमें पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ना है और कितने एरिया में प्रोजेक्ट का काम करना है। जैसे पेट्रोल का आपने सुना होगा कि आप गवर्नमेंट बोल रही है कि आप पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करें, तो उन्होंने बैरल्स के हिसाब से कैलकुलेशन लगाया होगा, मेजरमेंट लगाया होगा कि इन जनरल इन्वेंट्री में भारत में कितना फ्यूल ईंधन बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट को कितना बड़ा हम लाइव एग्जांपल देख पा रहे हैं।
1: वैज्ञानिक समझ जो
0: जी,
1: है वो आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है?
0: अगर हम देखें कि समाज है, सामाजिक विज्ञान में भी शब्द आ रहा है विज्ञान का, तो अगर हमें सोसाइटी को भी समझना है ना, तो उसमें भी विज्ञान है। आपने जनगणना अभी अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, इसमें भी मेजरमेंट, इसमें भी विज्ञान है अपने आप में। अब आप सोचें, पहले राउंड में वो 34 सवाल पूछते हैं, वे जो जनगणना के जो प्रतिनिधि हमारे घर आते हैं, फिर वो अपने आंकड़ों में लिखते हैं, फिर वो अगली बार आएंगे तो कुछ और जानकारी लेंगे। अब आप सोचिए, भारत में 140 करोड़ जनता है, तो उन 140 करोड़ जनता का जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए क्या विज्ञान लग रहा होगा, क्योंकि तो आप सिर्फ गिनती नहीं कर रहे हैं, आप भारत के अलग अलग समुदाय और अलग अलग लोगों के क्लास या उनके रिसोर्स को जान रहे हैं कि कितनी सुविधाएं हैं, कौन सुविधाओं से वंचित है, और उसके अनुसार फिर भारत सरकार अपनी योजनाएं लाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: कुछ चीज़ें, कुछ विज्ञान आपके आंखों के सामने नहीं है, वो कुछ चीज़ें पीछे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके साथ चल रही हैं।
1: मेट्रोलॉजी दिवस के ऊपर ये जानकारी हमें दे रहे थे आयुष श्रीवास्तव। इसी के साथ चलिए सुनते हैं इस गीत को जिसे हमने लिया है फिल्म सत्या से। आवाज़ है आशा भोसले और सुरेश वाडकर की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सूचना, जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में अब विवेक कहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना पहली जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबल

0: एबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद

0: निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना

0: की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज इटालियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी इन रोम टुडे। टू लीडर्स टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कोऑपरेशन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो साथी नीरजा। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बिना देरी के जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको गीत। फिल्म टाइगर 3 से गीत आप सुनेंगे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के स्वर में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकृति के एक छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जीव की। हम बात करेंगे मधुमक्खी की। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया। इस साल यानी वर्ष 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल, यानी प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ जो हम सभी का पोषण करती हैं। इसी विषय में कार्यक्रम में और बात करेंगे। फिलहाल सुनते हैं गीत फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। स्वर अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक के हैं। गीत लिखा कुमार ने, संगीतकार अमाल मलिक।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आइए जानते हैं कि मधुमक्खियां हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। इसी दौरान वो एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंचाती हैं। इसे परागण कहा जाता है। परागण की वजह से फल सब्जियां और अनाज उग पाते हैं, यानी हमारी खेती और भोजन का बड़ा हिस्सा मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। अगर मधुमक्खियां ना रहें तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए इन छोटे जीवों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मधुमक्खियां प्रकृति की मेहनती साथी हैं और हम आपका साथ निभाएंगे मनोरंजन में। गीत आप सुनेंगे फिल्म क्या सुपर कूल है हमसे, स्वर सोनू निगम के हैं, साथ में मीत ब्रोज और अनजान हैं। गीत लिखा कुमार ने, संगीतकार मीत ब्रोज और अनजान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नॉर्डिक के बीच व्यापार में पिछले एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में जो मंत्री भोपाल में हैं वे फिजिकली शामिल होंगे और जो भोपाल से बाहर हैं वे मंत्री वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच जागरूकता एवं जन भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सिकल सेल एवं थैलीसीमिया जांच मशीन का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच आज भोपाल में बैठक होगी। इस दौरान दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और AI आधारित समाधानों के उपयोग पर उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा की जाएगी। प्रदेश में आज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। और IPL में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया, जिससे राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। आज कोलकाता में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक और खास दिन है। आज विश्व माप विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 20 मई को मनाया जाता है। साल 1875 में कई देशों ने मिलकर एक समझौता किया था, इसे मीटर कन्वेंशन कहा गया। इसका उद्देश्य दुनिया में एक जैसी माप प्रणाली बनाना था, तभी से सही माप का महत्व और बढ़ गया। दोस्तों, हमारे रोज के जीवन में माप का बहुत काम होता है। दूध, सब्जी, कपड़ा या दवाई, हर चीज सही माप से दी जाती है। इसी विषय पर कार्यक्रम में और बात करेंगे। फिलहाल सुनते हैं गीत फिल्म हाउसफुल 2 से। स्वर श्रेया घोषाल के हैं, गीत लिखा समीर और अनजान ने, संगीतकार साजिद वाजिद।

अगर माप सही ना हो तो परेशानी हो सकती है, इसलिए हर जगह सही तौल और सही नाप ज़रूरी है। मीटर, किलो और सेकंड, ये जो इकाइयां हैं इसी प्रणाली का हिस्सा हैं। इन्हें पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इससे काम आसान और भरोसेमंद बनता है, लोगों के बीच विश्वास भी बना रहता है। आज विज्ञान और तकनीक के समय में माप विज्ञान बहुत ज़रूरी हो गया है। अस्पतालों, फैक्ट्रियों और स्कूलों में इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक शोध में भी सही माप बहुत मायने रखता है। मोबाइल और मशीनें भी सही माप से ही बनती हैं। किसानों और मौसम विभाग को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए, समय है कार्यक्रम में गीत का। करण औजला के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म बैड न्यूज़ से। गीतकार करण औजला, संगीतकार करण औजला।

सही माप से समय और पैसे दोनों की बचत होती है, इससे काम में गलती कम होती है और जीवन अधिक आसान बनता है। विश्व माप विज्ञान दिवस हमें सही माप का महत्व समझाता है। यह हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। हमें हमेशा सही तौल और सही माप का ध्यान रखना चाहिए, इससे ईमानदारी और भरोसा बढ़ता है। विज्ञान और विकास में इसका बड़ा योगदान है। आइए हम भी इसके बारे में जागरूक बने। अरिजीत सिंह और चरण के स्वर में गीत सुनेंगे। फिल्म का नाम तू झूठी मैं मक्कार। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नीरजा, आपको मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार कय्यूम मुनव्वर के स्वर में गजलें।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे कलाकार कय्यूम मुनव्वर के स्वर में गजलें। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज का विषय है सोमनाथ अमृत महोत्सव, विकास और विरासत की गौरव यात्रा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले दिनों सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और भारत की शाश्वत आत्मा के पवित्र प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। दरअसल सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है। सोमनाथ की प्रत्येक ईंट भक्ति का ताप और भारत के पुनरुत्थान का गौरव कहती है। इतिहास में कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और लेखक श्री कृष्ण मोहन झा जी। जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी में।
3: जी धन्यवाद आपका।
2: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनवाते हैं आपको।
4: साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।

0: जहाज़र प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश को देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है, इसे किस तरह देखते हैं आप?
1: देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ, जो सोमनाथ केवल सोमनाथ कहने को नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान सोमनाथ का है
0: जी।
1: और जो सोमनाथ के साथ घटित हुआ, यदि हम बात करें 1026 में मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से वहाँ तोड़फोड़ की और उसके बाद ये लगा कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सोमनाथ का निर्माण हुआ, फिर से आप नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसके बाद फिर आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसमें हमले किए और उसके बाद पुनर्निर्माण का क्रम समाज करता रहा है। तो यही वजह है कि जो मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारी विरासत है ये सुदृढ़ रही और ये हमें सिखा रही है कैसे हमको जो है मजबूती के साथ खड़े होना है, कमजोर टूटना नहीं है
0: जी।
1: हम टूटते नहीं हैं, पुनर्निर्माण करते हैं
0: जी।
1: ये उनके कहने का आशा है। स्वतंत्रता के बाद भी आप देखिए कि जब 1951 में, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, 11 मई 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी
0: जी।
1: तब से लेकर के 75 वर्ष हो गए और लगातार समृद्ध होता जा रहा है
0: जी।
1: और मंदिर का देखिए कि भव्यता लगातार बढ़ रही है
0: जी।
1: और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, आपको ध्यान होगा कि महाकाल लोक की निर्माण किया उन्होंने
0: जी,
1: काशी को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने
0: जी,
1: अयोध्या को देखिए कि अयोध्या का निर्माण और उसकी भव्यता किस ढंग से बढ़ी हुई है। तो आज ये पर्यटन के, यानी आप देखिए तीर्थ तो है ही हैं
0: जी,
1: लेकिन साथ में एक पर्यटन के केंद्र भी बन चुके हैं। यहाँ पे जो है पर्यटन और तीर्थ दोनों का समावेश दिखाई दे रहा है
0: जी,
1: इससे एक तरफ तो रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, तरह तरह के रोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और जब विदेश से भी लोग यहाँ जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस ढंग से होता है। आपने अपनी आँख से ही देखा, जो कि हमारे देखते ही देखते उज्जैन के महाकाल की दशा दिशा किस ढंग से बदल गई, तो उसी ढंग से सोमनाथ को भी हम लेते हैं। क्योंकि जो पहला जो आपका जो प्रश्न है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि हम कहीं टूटने वालों में से नहीं हैं, हम मजबूती से खड़े होने वाले हैं। जब जब टूटे हैं तो उसके बाद हम ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं
0: जी जी जी। प्रधानमंत्री ने, जो अगला मेरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, सोमनाथ को केवल एक भौतिक ढांचा मानकर उन्होंने उसे टकराते रहे, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आत्मबल, आत्मसम्मान और भारत के गौरव को दिखाता है।
1: देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से हमारी धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया
0: जी।
1: उसके बाद यदि मैंने बाबरनामा पढ़ी तो बाबरनामा में बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को और इतिहास को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करना, उनकी सीख थी। और यही वजह रही है कि जिस ढंग से ये जो हमारी संस्कृति रही है वो बच पाई, तो मुगलों ने उसमें बहुत कुछ, उनका योगदान भी उस ढंग से रहा
0: जी।
1: तो वो किया और जिस ढंग से समृद्धि हमारे पास जब से आज़ादी के बाद, और किसी देश के प्रधानमंत्री ने जब चिंता की खासतौर पर ज्योतिर्लिंगों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो जिस ढंग से उनकी चिंता देखने को मिल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विरासतों को किस ढंग से मिटाया गया
0: जी,
1: हमारी संस्कृति को कैसे, क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत मजबूत थी, दूसरों के पास संस्कृति नहीं। एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले भाई महावीर से हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश की का इतिहास नहीं है, जिस देश की संस्कृति नहीं है, वो आज संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को, हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं
0: जी।
1: तो ये उस प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब है कि हमारी संस्कृति तो थी, हमारा इतिहास तो था, लेकिन हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो आयोजन हो रहा है, 75वां वर्ष मनाया जा रहा है सोमनाथ जी का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि युवा पीढ़ी जाने कि हम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं, किस ढंग से हम दासता को झेले हैं, गुलामियों को झेले हैं, और आज जाकर के हमको जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को हम किस ढंग से सुरक्षित रखें और पुराने वैभव को हम बना के रखें।
0: और ये सोमनाथ अमृत महोत्सव है जो आने वाले 1000 वर्षों तक जो है वो लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, भारत की प्रेरणा बना रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
1: देखिए, निश्चित रूप से लाखों लाखों वर्ष तक, जब तक धरती रहेगी तब तक के सोमनाथ का जिक्र होगा, तब तक के काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा, तब तक के आप ओंकारेश्वर का जिक्र होगा, जब तक महाकाल का जिक्र होगा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये छाप कभी छूटेंगी नहीं
0: जी,
1: ये हमारे संस्कारों से रची बसी है, हमारी संस्कृति से रची बसी है और हमारे दैनिक जीवन से रची बसी हुई है, तो इसका मिटना तो संभव ही नहीं है। लेकिन

0: दृढ़ता बहुत जरूरी है। जिस ढंग से सुदृढ़ करने का प्रयास है, आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, पूरा प्रयास किया है कि लोग जाकर के देख करके आए। यहाँ से भी आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया,
1: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन
0: योजना के तहत जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है लोगों को दिखाने की, बताने की। जब तक कि लोग उससे
1: देखेंगे नहीं, तो
0: साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ है।
1: बिल्कुल सही बात। मंदिर के इतिहास को अगर हम समकालीन भारत के साथ अगर जोड़ते हुए देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं आप मंदिर का इतिहास समकालीन भारत के साथ?
0: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये जो इतिहास था बड़ा समृद्धशाली था। भारतीय लेखकों को तो छोड़िए, जो फारसी लेखकों ने लिखा है तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये मंदिर सोने की चिड़ैया थी
1: जी।
0: वहाँ पे स्वर्ण को लेकर के उन्होंने कहा अत्यंत समृद्ध माना गया सोमनाथ का मंदिर
1: जी।
0: तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों में कहा, तो समृद्धि तो बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि उसको लुटेरों ने लूटा है
1: जी।
0: कई बार लूटने का प्रयास किया
1: जी।
0: और जितने बार लूटा उतने ही समृद्धि उस मंदिर की लौटती गई है
1: जी। जी,
0: तो मेरा यही कहना है कि जिस ढंग से आप, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जो मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है, और हम यही बताना चाहते हैं इन 75 वर्षों के बाद युवाओं को कि किस ढंग से जो है उसका इतिहास रहा है, किस ढंग से स्नेह निर्माण कार्य हुआ है और आज एक गौरवशाली समृद्धता प्राप्त करी है उसने
1: जी। जहाँ साहब, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में ये जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से ये पहुंचेगा?
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में और ये जो आयोजन है
1: जी,
0: क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं कि जब आयोजन जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वृत्त प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो प्रदर्शन, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी इतिहास से लेकर के आज तक की प्रदर्शनी होगी, तो युवा पीढ़ी समझ पाएगा और उसका प्रचार प्रसार जिस ढंग से आज हम बैठ करके आज ही देख रहे हैं कि आज ये पूरे अखबारों में लगातार सोमनाथ को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि कितना समृद्ध आर्टिकल था, उसने कितने भावुकता के साथ लिखा और लोगों से अपील भी की कि जाएं सोमनाथ, जाएं और वहां पे करें
1: जी। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर अगर
0: सोमनाथ की
1: चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे नौजवान युवा सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, धर्म के बारे में जाने।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो आज का युवा है अब वो किताबों से हट चुका है
1: जी,
0: वो रील में विश्वास करता है, तो अब रील, क्योंकि अब जब वहाँ जाएंगे तो रील बनाएंगे
1: जी,
0: तो रील भी फ्लोट होगी सोशल मीडिया में, एक जो संचार जिस ढंग से होगा उसका जो जिस ढंग से सर्कुलेट करेंगे तो वो गाँव तक चीज़ें पहुँचेगी, तो सोमनाथ की जो कथा है वो अब वो जो युवा हैं वो खुद प्रस्तुत करेंगे, तो उनको खुद एक लगेगा जब वहाँ पे जब आप पहुँचते किसी चीज़ को आप जाकर के स्वयं देखते हैं, जो कि आपने खुद रिपोर्टिंग भी की है, जब किसी चीज़ को रिपोर्ट आप वहाँ पहुँच करके करते हैं तो बात अलग होती है, और कहीं सुन करके कोई बात करते हैं तो बात अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों की संख्या में जो वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, कई बुजुर्गों का सपना था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जो है एक मुक्ति प्राप्त होती है और अपने जीवन काल में इसको करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है
1: जी।
0: तो उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे वो पूरे होंगे, युवा जा करके देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार आप आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से निरंतर, अब देखिए सोमनाथ की स्टोरी लगातार आ रही है, सोमनाथ पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हुआ है
1: जी। जैसा शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो युवा हैं, आज के युवा कुछ साल पहले तक उतने धार्मिक नहीं थे, उतने चेतन नहीं थे धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर, विरासतों को लेकर, लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा धार्मिक जितना होना चाहिए उतना है।
0: ये बहुत मार्मिक प्रश्न आपने कहा। 2014 में मैंने भी दो दिन पहले ही कहीं ये कोट किया था
1: जी
0: कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की
1: जी,
0: उन्होंने कहा शौचालय पहले फिर देवालय
1: जी।
0: जब आज़ादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़े तो देवालय की चिंता कैसे कर सकते हैं आप
1: जी।
0: पहले उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की
1: जी,
0: समग्र स्वच्छता की बात की, स्वच्छता अभियान चलाया, और उसके बाद देखिए

0: सने सने उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित किया
1: जी।
0: उन्होंने एक बात और थी, मैं आज यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लड़के को तो आप घूमने देते हैं, पर लड़की लेट हो गई तो उसका हिसाब पूछते हैं
1: जी।
0: तो ये जो मैसेज उनका गया, और आज देखिए कि 2014 से हम आज 26 में बैठे हुए हैं, 12 साल का सफ़र है। इन 12 सालों में महिलाएं कितनी समृद्ध हुई। अभी हाल ही में आपने स्पेशल डिस्कशन भी किया महिला आरक्षण को लेकर के, जो बिल आया था उस पर भी आपने किया। तो पूरे देश ने देखा कि किस ढंग से मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के कार्य किया, और किसी भी परिवार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक पूजा पाठों में उनकी भूमिका रहती है, तो आप जो आपका जो प्रश्न था कि युवा क्योंकि आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पूजा का क्रम और धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि जो संचार माध्यम है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि समाज को ये हतोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण भी इसके माध्यम
2: से। नए साल पे भी युवा जो है पहाड़ों पर समुन्द्र किनारे जाने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं, काशी वाराणसी जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर।
0: भाई आप देखिए, पहले लोग ताजमहल और कुतुब मीनार देखने जाते थे
2: जी जी,
0: अब आज जो है वो मंदिरों में, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे इतने सारे परिचित आते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत जाती है कि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए आज इतनी भीड़, लाखों की संख्या में नए वर्ष में जो है वो युवा आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, और हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता की तरफ से हम माननीय मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे, उनको जीवित कर दिया, आज उनको इस योग्य बना दिया कि लोग आज वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज देखिए, आज आप ही आपके परिचित कितने बोलते होंगे कि उज्जैन जाना है
2: जी,
0: तो आज आप हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था करना कठिन हो गया है
2: जी। सही बात। अमृत महोत्सव की बात चल रही है, तो जो सोमनाथ अमृत महोत्सव है, इससे सोमनाथ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को जहाँ साहब कैसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?
0: देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, जो कि धार्मिक पर्यटन जब होता है
2: जी,
0: तो जब बाहर से जब आदमी आता है, जब आप कहीं भी जाते हैं, तो आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं
2: जी।
0: तो एक तो आने के लिए आपको पहले तो होटलों की व्यवस्था की जरूरत होगी वहाँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं
2: जी।
0: तो होटलों का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा
2: जी।
0: फिर आपको वाहन का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है
2: जी।
0: फिर धार्मिक पर्यटन के लिए जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
2: जी।
0: जो स्थानीय जो परिवहन है उसको लाभ मिलता है, गाइड को लाभ मिलता है, जो वहाँ का लोकल उत्पाद होता है उसको एक दिशा दशा मिलती है। आप देखिए, कई प्रोडक्ट ऐसे हुए जो लोकल से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए। तो जो हस्तशिल्प है हमारा, उसको एक अलग स्थान मिलेगा। प्रसाद का उद्योग है, वो बढ़ोतरी हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो फूल, नारियल और ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक उसको भी एक अलग दिशा मिलेगी
2: जी। जी जी।
0: अच्छा, गुजरात सरकार द्वारा इसको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखिए, छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया
2: जी,
0: गया है
2: जी। और जाहिर बात है कि अगर जो धार्मिक पर्यटन से अगर हम इसको देखें जोड़कर, तो जब लोग आएंगे तो स्थानीय जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी फायदा होगा, जो होटल वालों का भी फायदा होगा। चौतरफा विकास पर्यटन के साथ, ये मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही कही जाए, कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वहाँ विकास चौतरफा हुआ है। सिर्फ मंदिर नहीं बनाए हैं, मंदिर के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है,
0: चहुमुखी विकास हो रहा है। और देखिए, आप दूर मत जाइए, आप तो यहाँ से हमने उज्जैन आपने खुद देखा होगा, कल और आज में आप अंतर महसूस करिए कि कल क्या था
2: जी।
0: आज आप चाह करके भी वहाँ पे होटलें पूरी फुल हैं
2: जी।
0: वहाँ पे रोजगार के नए नए सृजन होते जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो यही स्थिति आपको सोमनाथ में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि लोकल उत्पाद अब जो है ग्लोबल होता जा रहा है। तो हमारी जो चीज़ें थी, तो अब बाहर का जब आदमी आकर के जब देख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर ये इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको देखने को मिलेगा
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहाँ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है सोमनाथ मंदिर जो अमृत महोत्सव है उस पर।
0: देखिए, किसी चीज़ को जीवंत रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सब चीज़ें बरसों से चले आ रही है। और ये क्योंकि आप देखिए कि स्मारिका निकाली जाती है
2: जी,
0: डाक टिकट जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बताता है। ये बरसों बरसों तक, जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी ने कहा कि हजारों वर्ष तक याद रहेगा, तो याद कैसे रखा जाएगा
2: जी।
0: तो ये डाक

0: याद रखे जाएंगे, ये
1: जी
0: सिक्के याद रखे जाएंगे,
1: जी
0: ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो
1: जी
0: याद रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इस चीज़ को चिरस्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1: जी जैसर, सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक यात्रा जो है, 1026 सन 1026 से शुरू होती है और आज हम सन 2026 में हैं, 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी हुए और इन आक्रमणों और उनके पुनर्निर्माण के बाद जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, किस तरह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रतीक बन सकता है?
0: देखिए, बहुत ही ये बात रही है कि मोदी जी ने इस बात को, जैसे आपने भी कहा,
1: जी
0: कि किसी चीज़ के विकास के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को,
1: जी
0: सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए।
1: जी
0: क्योंकि आप जब सोमनाथ जाएंगे तो
1: जी
0: गुजरात के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे,
1: जी
0: सोमनाथ के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, तो ये जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होंगी,
1: जी
0: जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे मानस में स्थान बना चुके रहेंगे,
1: जी
0: मानस पटल पे वो शामिल हो चुके रहेंगे। तो ये
1: जी
0: जो करोड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग जा रहे हैं वहाँ पे,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे पड़ेगा। और
1: जी
0: आने वाले समय में, जैसे अब हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में,
1: जी
0: तो धीरे धीरे शनि शनि एक एक ज्योतिर्लिंग पे काम होना शुरू हो चुका है।
1: जी
0: तो आने वाले समय में इसी तरह के जो आयोजन हैं वो अन्य जगहों पर भी होंगे, तो हमें लगता है कि हमारी जो विरासतें हैं वो और सुदृढ़ हो पाएंगी।
1: जी 11 मई को जो समारोह के दौरान, जो अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ भव्य कुंभाभिषेक और महापूजा की और देश की समृद्धि की, लोगों के कल्याण की कामना की।
0: देखिए, ये हमारी परंपरा है,
1: जी
0: क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जब
1: जी
0: भी कभी जब सिंहस्थ होगा तो
1: जी
0: 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से वहाँ अभिषेक होगा। विधिवत सारे अखाड़ों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे,
1: जी
0: शंकराचार्य वहाँ मौजूद रहेंगे।
1: जी
0: उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। यही कार्य मोदी जी ने यहाँ किया, और यही वजह है कि जिस ढंग से आपने देखा कि 11 मई को चूंकि इसकी नींव रखी गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, चूंकि
1: जी
0: 11 मई 1951 में
1: जी
0: जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी इस ऐतिहासिक पल को वो किया था, उसको याद किया गया, और यही वजह थी कि मोदी जी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक करके ये इस कार्य की का श्रीगणेश किया था।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अंतिम एक, जो आज के युवा हैं, और क्योंकि युवा पीढ़ी के केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में हमेशा युवा पीढ़ी रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म को लेकर, विरासत को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, जो सोमनाथ, आप भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये अपील करेंगे कि वो भी सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ की विरासत को देकर देखें, और किस तरह से इतने आक्रमणों के बाद भी मंदिर आज वहाँ खड़ा हुआ है और देश के गौरव की को बता रहा है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं आज के युवाओं से यही आग्रह करना करूँगा कि वो हमारी विरासत को, वो हमारे इतिहास को और वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करें। क्योंकि भारत की बागडोर आने वाले समय में आपके हाथ में ही आने वाली है।
1: जी
0: आप इसको समझें कि इसकी महत्ता क्या है। बड़े संघर्षों से चीज़ें आज यहाँ खड़ी हुई है, इसको सहेजना और आगे लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। आप जरूर देखें, और आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि किस ढंग से कोई इमारत बार बार टूटने के बाद भी खड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस बात को आत्मसात करने का ये अवसर होगा कि किस ढंग से गजनवी ने इसको बार बार तोड़ा, उसके बाद कई आक्रांताओं ने इसको तोड़ा, लेकिन आज भी सोमनाथ खड़ा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर आज भी वही वैभव के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि यदि हम प्रयास करते रहें तो जीर्ण उद्धार लगातार होता है और हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी जाने से पहले एक बार फिर मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में 11 मई को जो शामिल हुए थे वहां पर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को

नष्ट किया। लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ

0: इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारक कृष्ण मोहन झा जी को, जो कि सोमनाथ अमृत महोत्सव पर उन्होंने विस्तार से वहाँ की विकास और विरासत की गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: धन्यवाद, और आकाशवाणी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर विषय को समाहित किया और लोगों तक सोमनाथ के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी।
7: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ नागरिकों को जागरूक करने, जन सहभागिता सुनिश्चित कराने और जनगणना 2027 को सफल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जनगणना प्रचार

रथ के माध्यम से जिले में नागरिकों को जनगणना के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। प्रचार रथ नागरिकों को वीडियो फिल्म एवं जन जागरूकता संदेशों के जरिए जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से बीते दिनों चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास के नए क्लस्टर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन देकर भरोसा जताया और उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे साझेदारी पर आधारित विकास रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि और आमजन अमल में लाए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से महानगरी एक्सप्रेस पकड़कर खंडवा के लिए रवाना हुए। गांव बोहरडा से स्टेशन तक ईवी कार से पहुंचे और फिर रेल यात्रा की। उन्होंने निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक यातायात अपनाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। बुरहानपुर जिले की खकनार पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उनकी टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हा दुल्हन को हेलमेट भेंट करने का अभियान शुरू किया। ऐसे ही क्षेत्र की दर्जनों शादियों में पहुंचकर पुलिस बारातियों को यातायात सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी डैम रोमांच और रेस्क्यू की असली पाठशाला बन गया है। आपदा प्रबंधन के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन दूसरे सत्र में SDERF, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 32 जवानों ने पानी के बीच जीवन बचाने की बारीकियां सीखी। तेज धूप और लहरों के बीच जवानों ने तैराकी, बोट संचालन, डूबते व्यक्ति तक फुर्ती से पहुंचने और सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक का अभ्यास किया। दूध की धार बढ़ाने के उद्देश्य से क्षीरधारा योजना के तहत पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकाकरण, नस्ल सुधार और आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर बुरहानपुर जिले में पशुपालन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना ने जोर पकड़ लिया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव दस्तक दे रही हैं। वहीं बांझपन से जूझ रहे पशुओं के लिए विशेष शिविर, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर नस्ल तैयार करने पर खास फोकस किया जा रहा है। बुरहानपुर का करीब 195 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर इन दिनों पुरुषोत्तम मास में भक्ति से सराबोर है। यहाँ रोजाना प्रभु लक्ष्मी नारायण देव का सैकड़ों लीटर दूध, दही, केसर, पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि सन 1882 से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा प्रतिदिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की समाजसेवी महिलाएं रोजाना समूह बनाकर स्टेशन पहुंचती हैं और ट्रेनों में सवार यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सुकून का एहसास कराती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित जनजाति बाहुल्य 116 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से गांव-गांव कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दवाटिया में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन जागृति संस्था बुरहानपुर द्वारा नर्सेस डे के उपलक्ष्य में बुरहानपुर क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में कार्यरत महिला एवं पुरुष नर्सेस का सम्मान समारोह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. LDS फुनकवाल, जनजागृति संस्था के संरक्षक एवं संस्थापक महेंद्र जैन और संस्था अध्यक्ष डॉ. किरण सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने TL बैठक में बीते दिनों निर्देश दिए कि नॉन अटेंडेड शिकायतें पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी लेने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग को अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला संसार और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी प्रेक्षा सक्सेना। सखियों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है और ये मौसम अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में यदि हम अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी स्वस्थ आदतें शामिल कर लें तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी स्वस्थ एवं खुशहाल रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारी रोजमर्रा के व्यवहार से होती है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, हरी सब्जियां और मौसमी फल खाना, नियमित व्यायाम करना और पूरी नींद लेना, ये आदतें हमारे शरीर को ऊर्जा और मन को सुकून देती हैं। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। यदि वे स्वयं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरे परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख पाएंगी और पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। दिन में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें, योग करें और हल्की सैर करें और तनाव से दूर रहने का भरसक प्रयत्न करें। तो आइए आज से हम सभी ये संकल्प लें कि स्वस्थ आदतों को अपनाकर अपने जीवन को अधिक सुखद और संतुलित बनाएंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सखियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और आज का दिन है शीर्षक गीत का। तो आज का हमारा शीर्षक है बिंदिया, जो कि स्त्रियों के श्रृंगार को पूर्ण करती है। तो सुनिए इसी शीर्षक पर आधारित ये गीत।

सखियों, माथे पर सजी बिंदिया सिर्फ सुहागन का मान और सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती बल्कि जीवन साथी के मन को भी लुभाती है। इसकी चमक में अपनापन, प्यार और रिश्तों की मधुरता छिपी होती है। कभी लज्जा, कभी इठलाना, इस तरह नए नए रंग बिखेरती बिंदिया स्त्री की मुस्कान को और भी खास बना देती है। किसी सुहागन स्त्री की बिंदिया उसके स्थायी प्रेम का भी प्रतीक होती है। तो इसी प्यारे से एहसास के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, माथे की बिंदिया सिर्फ श्रृंगार नहीं, भारतीय नारी की मुस्कान और आत्मविश्वास की पहचान भी है। भारतीय परंपरा में यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आज्ञा चक्र पर स्थित एकाग्रता को मायने देती है। यही वो केंद्र है जो एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति से भी जुड़ा होता है। इसीलिए बिंदिया चेहरे की सुंदरता के साथ व्यक्तित्व में एक विशेष आभा भर देती है। बिंदिया की चमक के साथ ही स्त्री का स्वरूप और भी दमक जाता है। तो आइए सुनते हैं ये इठलाता हुआ गीत।

सखियों, स्त्री के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का स्वाद भी अपनी विशेषता लिए होते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको तरोताज़ा रखने के लिए लाए हैं हम एक स्वादिष्ट रेसिपी बादाम के शरबत की। तो इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बादाम, 5 कप शक्कर और पानी। 250 ग्राम बादाम से हम 2 लीटर बादाम का शरबत बना सकते हैं। सबसे पहले रात में बादाम को पानी में भिगोकर रख दें, सुबह उनके छिलके उतार लें, फिर उनमें 1 कप पानी डालकर आधा घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे बादाम का फ्लेवर पानी में आ जाए। फिर उन्हें मिक्सर में एकदम महीन पीसकर पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में 5 कप चीनी, 1 लीटर पानी मिलाकर रख दें और गैस पर रख दें। आप गैस को ऑन करें और चीनी की जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं। जब पानी में चीनी मेल्ट हो जाए तो बादाम का पेस्ट उसमें डालकर उसे चलाएं। इसे आधे घंटे तक चलाते रहें और पकाएं। फिर गैस बंद करके ठंडा होने को छोड़ दें। ठंडा होने पर इसमें इलायची पाउडर और केवड़ा जल फ्लेवर के लिए मिलाएं। यह आपका बहुत ही स्वादिष्ट बादाम का शरबत बनकर तैयार है। अब इसे साफ बोतलों में भर के फ्रिज में रख दें। ये 2 लीटर शरबत तैयार हो जाएगा। इसे सर्व करते समय गिलास में बर्फ और 1/4 शरबत डालें, बाकी पानी डालकर सर्व करें। चाहे तो दूध में भी सर्व कर सकते हैं। तो सखियों, शरबत का आनंद लें और सुने ये मधुर गीत।

तो सखियों, छोटी सी बिंदिया ने हमारे कार्यक्रम में आज प्यार, परंपरा, सौंदर्य और अध्यात्म हर रंग घोल दिया। कभी ये मुस्कान बनकर चमकी, कभी रिश्तों की मिठास बनकर दिलों को छू गई और कभी भारतीयता की पहचान बनकर दमक उठी। आशा है बिंदिया की ये चमक से सजा महिला संसार आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया के लिए हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम महिला संसार द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, पिन कोड है 462002। तो सखियों, आत्मविश्वास से भरी ये बिंदिया आपके माथे पर हमेशा यूं ही चमकती रहे, इसी शुभकामना के साथ अपनी रेडियो सखी प्रेक्षा सक्सेना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार। यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित एस एस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन। राग है अहीर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित एसएस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन। राग था अहीर भैरव। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर पांच देशों की यात्रा के पांचवें और अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। प्रदेश में अभी तक 12,30,426 किसानों से 90,08,469 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 18,707 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं की स्कैन आंसर कॉपी देखने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब ये तारीख 23 मई कर दी गई है। यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। यूसीसी के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड, रीवा, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 25 मई से 6 जून तक गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।
2: नमस्कार, फोन करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जीवन कभी समुद्र की लहरों सा ऊंचा उठता है तो कभी चुपचाप किनारों से टकराकर बिखर जाता है। कभी समय की धूल मन के आईने पर जम जाती है तो कभी कोई मधुर सी धुन उसे फिर से चमका देती है। संगीत वो बारिश है जो भीतर सूखती संवेदनाओं पर धीरे धीरे उतरती है और फिर सब कुछ हरा हो जाता है। संगीत वो दीपक है जो थके हुए मन के अंधेरों में भी उजाला रख देता है। संगीत वो खुशबू है

0: जो बीते हुए सुनहरे पलों को फिर से जिंदा कर जाता है, हमारे जीवन को महका जाता है। तो आइए सुरों की इसी रेशमी छाओं में कुछ पल गुजारते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें, आपकी चाहतें गुनगुनाता एक हसीन सा सफर। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से। दीदी
0: राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
1: बहुत धन्यवाद दीदी, बढ़िया हूँ मैं। यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है मेरे पास, दो मैं रेडियो भी, चार पांच रेडियो रखता हूँ मैं, जैसे अलग
0: अच्छा।
1: अलग स्टेशन सुनता हूँ, विविध भारती है, भोपाल है, इंदौर है, अभी जैसे करीब 40-45 वर्ष हो चुके हैं मुझे।
0: क्या बात है, तो आप हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं राजू जी?
1: कार्यक्रम ज्यादातर हम ये फरमाइश कार्यक्रम से ज्यादा हम मतलब वो रहते हैं, छुट्टियों के फोन इन कार्यक्रम।
0: जी जी जी। और अब हम जानना चाहते हैं कि गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: आज गीत अमर अकबर इन्फोनी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, अनहोनी को होनी करके, होनी को अनहोनी, किशोर दा, सेलन सिंह और मयंक कपूर की आवाज में है ये गीत।
0: क्या बात है।
1: आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया हुआ गीत मोहन देसाई साहब की।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारे क्रेडिट्स याद हैं। अक्सर लोग गायक कलाकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो गीतकार और संगीतकार हैं उनको लोग याद नहीं रखते।
1: उनको खजाना ही दे रखा है ना।
0: जी जी जी। चलिए राजू जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। यूं ही आकाशवाणी से अपना प्रेम बनाकर रखिए। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: अरे वाह हसीना जी, बहुत
1: जी
0: बहुत
1: आपका
0: स्वागत
1: भी
0: है
1: बहुत,
0: आपका।
1: जी आपसे बात करने के लिए बहुत दिल बेताब था मैडम।
0: हमारा भी मन बेचैन रहता है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए। कैसी हैं आप?
1: जी, अच्छे हैं आप? कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी अच्छे ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
1: जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा मैडम, क्योंकि आप
0: जी
1: लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं।
0: जी जी तो आज कौन सा गीत सुनेंगी हसीना जी?
1: इम्तिहान फिल्म का नाम और गाने के बोल हैं।

0: उड़ जाऊंगा, ये सुना दीजिए।
1: वाह वाह वाह, सुरीली सी फरमाइश आपने की है। संगीत यूं ही आपकी ज़िंदगी में बना रहे और आपको खुश करता रहे, आपको निश्चिंत करता रहे, आपको स्वस्थ करता रहे, ये कामना है हमारी हसीना जी।
0: जी।
1: बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी, मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में।
1: जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह बात कर रही है शायद?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
1: जी, आपसे बात करके जी मान के चलिए कि हमारा सौभाग्य था जी जो आपसे आज हमारी बात काफी समय के बाद बात हो रही है आपसे हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत खुशी हो रही है। अमित जी, आपने बताया कि आप 16 साल पुराने श्रोता हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से आपको पसंद है?
1: जी जी, आपके यहाँ से ग्राम सभा कार्यक्रम हो, युगवाणी कार्यक्रम हो, और जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम आता है वो भी, और एक मैम बहुत समय पहले एक आता था गुरुवार को मेरे ख्याल से, जिसका नाम था बात पते की लात पते की, जो कार्यक्रम इस पर चलता था, बहुत अच्छा लगता था। शुक्रवार को हेलो ग्राम सभा भी कार्यक्रम जाता था 7:30 के करीब को, ये मान के चलिए कि उसी समय से सुन रहा।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत से कार्यक्रमों का आपने नाम बताया।
1: कार्यक्रम और जाता था आपके यहाँ से हरियाली और खुशियाली, संडे को जाता था जी, हमारे सुभाष सक्सेना जी जिसकी प्रस्तुति देते थे।
0: जी जी जी, तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अमित जी, आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, आप सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम रहेगा मुजरिम, और इसमें जो है मोहम्मद अजीज साहब की बेहतरीन आवाज है, गीत के बोल रहेंगे। मुजरिम ना कहना मेरे लोगो, ए मुजरिम तो सारा जमाना है।
0: बहुत ही सुंदर, आपने गुनगुना कर अपनी फरमाइश बताई।
1: जी, हमारे अनु भट्टाचार्य जी हैं और प्रेमदास बाबा जी, इन दो लोगों के लिए पुराने श्रोता हैं, यह गीत देरी कर रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमें फोन किया, आप तक भेजते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है ये। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: सोनू दंदवा बोल रहे हैं मैडम।
0: सोनू जी,
1: पुराने श्रोता है मैडम, कई बार फोन लगा चुका हूँ आपको।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला दमो से बोल रहा, ग्राम पटेरिया।
0: तो सोनू जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम।
0: क्या
1: गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है तापमान यहाँ का।
0: बहुत ज्यादा गर्मी है इस साल, तो क्या उपाय करते हैं आप? क्या उपाय करते हैं बचाव के लिए?
1: बचाव के लिए मैडम उपाय तो क्या है, ये पानी यानी पीते रहते हैं और ज्यादा ज्यादा छाया में रहते हैं, धूप में निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं।
0: बहुत तेज गर्मी है, तो इस गर्मी में कुछ सुकून जो मिलता है वो संगीत से मिलता है।
1: रेडियो सुनते रहते हैं, रेडियो है DTH के माध्यम से।
0: जी जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: लावार फिल्म का
0: गीत के बोल बताइए।
1: काहे पैसे पे इतना गुरूर किए हैं।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? राकेश वर्मा बोल रहा है, बसाई दरवाजा से, छतरपुर से।
0: राकेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं दीदी जी। आपके प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 11 बजे

0: मतलब सुनते हैं और 3 बजे तक तो आपका कार्यक्रम चलता ही है।
1: जी जी जी।
0: और बहुत पुराने श्रोता हैं अपन मध्य प्रदेश भोपाल के।
1: अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: जी धर्मवीर का सुनेंगे साहब।
1: गीत के बोल बताइए।
0: 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी।
1: वाह वाह वाह।
0: टूटे न टूटे धर्मवीर की जोड़ी।
1: धर्मवीर की जोड़ी, बिल्कुल।
0: तो क्या है कि हम जो है मध्य प्रदेश से दोस्ती बनाए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में और हमारे जो मित्र हैं उनका नाम ले सकते हैं क्या?
1: जी जी जी।
0: कल्पा सतना से हैं चांद मोहम्मद खान और बांदा से हैं दिनकर जी।
1: तो चलिए, आपकी जो ये धर्मवीर की जोड़ी है ये तो बनी ही रहे। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आपकी जो जोड़ी है वो भी धर्मवीर की जोड़ी है और ये भी सलामत रहे। तो चलिए, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
2: 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे।

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। हेलो नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं विजय पांडे थाना पछवाड़वा जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किए।
0: आपका
1: मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: जी जी।
1: पेड़ से फूल लाखों गिरते हैं, उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई।
0: क्या बात है।
1: आदर काबिले अदब मोहतरमा सुनीता साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। विजय पांडे जी, आपने अपने अंदाज में इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है, बहुत ही सुंदर अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: हाँ जी।
1: कहा गया है कि मोहब्बत एक ऐसा फूल है

0: जिसे कोई एक बार सूंघ लेता है तो जिंदगी भर उसकी खुशबू को नहीं भूलता। मोहब्बत में इतनी ताकत है कि सुनसान रास्तों और वीरान इलाकों को भी आबाद कर सकती है। मोहब्बत वो पाक लफ्ज है, कुदरत ने शायद इसीलिए मोहब्बत में इतनी मिठास रखी है कि दुश्मन को भी आसानी से खत्म किया जा सके। मोहब्बत इंसान को इंसानियत का तरीका बताती है।
1: क्या बात,
0: मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, जज्बाई मोहब्बत नेक होना चाहिए। मोहब्बत माँ बाप बहन भाइयों वतन दरख्तों यहाँ तक कि एक पहाड़ से उखड़े हुए पत्थर से भी हो सकती है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत जैसे जज्बे को बदनाम करते हैं।
1: वाह क्या बात है विजय पांडे जी, आपने बहुत खूबसूरत विचार रखे। और वास्तव में प्रेम जो है वो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। देखिए आज युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है, ऐसे समय में मोहब्बत का ये पैगाम बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत ही शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विचार भी रखे। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: फिल्म का नाम है प्रेम रोग
1: जी,
0: और गीत के बोल है मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ।
1: वाह, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। सुनीता मैम जी को नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा
0: अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हूँ, चित्रकूट से बोल रहा हूँ। वैसे हूँ श्रीनगर जिला महोबा का
0: अच्छा, इस वक्त चित्रकूट में हैं।
1: जी। घूम
0: कैसे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: रहे हैं चित्रकूट में, शुरुआत
0: इतनी गर्मी में,
1: पर है
0: इतनी गर्मी में।
1: जी, थोड़ा है इमरजेंसी थी तो गए
0: अच्छा, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, गर्मी
1: जी।
0: बहुत ज़्यादा है, तो ख्याल रखिएगा अपना। और
1: जी
0: बताइए कि आज
1: धन्यवाद।
0: फरमाइश क्या है आपकी?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा ये रास्ते हैं प्यार,
0: गीत के बोल।
1: मेरा दिल था एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा
0: मेरा दिल
1: किसी
0: था एक
1: की
0: खाली कमरा।
1: भी। जी
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद जी कि आपने फ़ोन किया चित्रकूट से।
1: जी
0: आपका
1: जी
0: काम सफल हो, ये हमारी कामना है आपके लिए। और आप
1: बहुत
0: तक
1: दिनों
0: भी
1: बाद आपसे बात हुई है मेरी।
0: जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया।
1: जी आपका भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: जसराम यादव।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जसराम जी?
1: जोराई से।
0: जोराई, ये कहाँ पड़ता है?
1: जिला शिवपुरी।
0: शिवपुरी, कैसे हैं? जी जी, कैसे हैं?
1: हम बढ़िया मैडम।
0: और याद किया आपने आकाशवाणी मध्य प्रदेश को तो आकाशवाणी की याद किस तरह से बनी रहती है?
1: आकाशवाणी की याद तो बनी रहती है मैडम, क्या इसमें अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं सुनने के लिए, अच्छी बातें मिलती हैं सुनने के लिए।
0: तो इन बातों का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है कभी?
1: हाँ हाँ मैडम।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी सुनते हैं और जो बातें आप तक पहुंचती हैं उन्हें स्वीकार भी करते हैं, अपनाते भी हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा होता है।
1: पहले क्या रेडियो सुनते थे, अब मोबाइल पर सुनते हैं मैडम।
0: हाँ, माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन बातें पहुंचती हैं और असर करती हैं, ये बड़ी बात है। कौन सा गीत सुनवा दें आज?
1: दिलवाले कुछ कर का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी भी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था।
0: अच्छा, तो चलिए ये गीत आप तक भेजते हैं जसराम जी। इसी तरह आकाशवाणी के साथ अपना प्रेम बनाकर रखिए। आज आपने फोन किया
1: मैडम, दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम। हमारे दोस्त हैं मनपुरा के मंची मनोज नामदेव, मंची नामदेव, अर्जुन जाटव, श्याम रंग जाटव।
0: इन सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप सुनना चाहते हैं दिलवाले फिल्म का गीत?
1: हाँ मैडम।
0: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं और आप सभी दोस्त मिलकर इसका आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का, नाम बताइए।
1: मैं निखिलेश अहरवार, ग्राम चीखली, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा।
0: मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज आपकी पसंद का कोई भी अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए।
0: अरे वाह, हमारी पसंद का गीत। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि जिंदगी में इंसान हर जगह अपनी पसंद चाहता है ना, चाहे कपड़े हों, खाना हो, दोस्ती हो, फिल्म देखना हो, हर जगह अपनी पसंद हम चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है,
1: जैसी है कि कुछ आपकी पसंद का भी हो, कुछ हमारी पसंद का, मिला जुला चलता रहता है। अच्छा
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: तो ये जो मिला जुलापन है ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो चलिए मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी आपसे बात करके

तो दोस्तों, संगीत की ये महफिल अब यहीं थमती है, लेकिन सुरों की ये नर्म रोशनी आपके मन में यूं ही बनी रहे। जब भी जीवन की राहें आपको थकाने लगें, जब भी समय की धूप कुछ ज्यादा तीखी लगे, तो किसी गीत की छाओं में कुछ पल बैठ जाइए, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मरहम भी है। वो मन को फिर से जिला देता है। तो संगीत के इसी मधुर एहसास के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। फिर मिलेंगे नई धुनों, नई फरमाइशों के साथ, नए रंगों से सजी एक खूबसूरत महफिल में। तब तक मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, संगीत की ये महफिल अब यहीं थमती है, लेकिन सुरों की ये नर्म रोशनी आपके मन में यूं ही बनी रहे। जब भी जीवन की राहें आपको थकाने लगें, जब भी समय की धूप कुछ ज्यादा तीखी लगे, तो किसी गीत की छाओं में कुछ पल बैठ जाइए, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मरहम भी है। वो मन को फिर से जिला देता है। तो संगीत के इसी मधुर एहसास के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। फिर मिलेंगे नई धुनों, नई फरमाइशों के साथ, नए रंगों से सजी एक खूबसूरत महफिल में। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व और राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन आज दोपहर राजधानी भोपाल में होगा। महासम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबोधित करेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार अब श्रद्धालु 500 रुपये का शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन दिन प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं, वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म अजनबी से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश अमरावती महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, शाहिद। अगले श्रोता फ्रेंसी गांव से हैं, राजकुमार, सरजीत, प्रमोद, राजू, बबीता, सुभाष और डब्बू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म हम आपके हैं कौन। गीतकार देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण। श्रोता, जिन्होंने फरमाइश हमें की है वो पंजाब से हैं, रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं, राजेश, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सोल्जर से। गीत को सुरों से सजाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ज्वेल थीफ से। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार एस डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है जयराज प्लॉट राजकोट से, श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीनान, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पाकुड़ झारखंड से। श्रोता हैं उत्तम कुमार, श्वेता, किशु और ताशु। अगले श्रोता पटियाला से हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का 7वां भाग।

0: इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं पंचतंत्र का द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को कुछ यूं सुनाया। असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुतः।
1: असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुतः। साधयन्त्याशु कार्याणि काकाकुमृग कूर्मवत्। प्रियवत्सगण, विद्वान बहुश्रुत एवं बुद्धिमान साधनों के अभाव में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कौवे, चूहे, हिरण और कछुए ने मिलकर अपने कार्यों को सिद्ध कर लिया। लो सुनो, दक्षिण के किसी राज्य में एक विशाल सा वृक्ष था जिसके फलों को पक्षी मुक्त रूप से खाया करते थे। उसके कोटर में अनेक कीट निवास करते थे। दूर दूर से आने वाले पथिक उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया करते थे। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा निवास करता था। एक बार वो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था।
2: दिन चढ़ाया, अभी तक एक दाना भी नहीं जुटा पाया। भूख के कारण दशा दयनीय हो रही है। अरे अरे, ये क्रूर ऊर्ध्वकेश यम के आकार का कौन मनुष्य इधर आ रहा है? ये तो बहेलिया है। ये दुष्ट अवश्य ही मेरे वट वृक्ष की ओर आ रहा है। हे प्रभु, ये मेरे साथियों को जाल में फंसा लेगा। मैं शीघ्र जाकर उन्हें सावधान करता हूं। मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। एक दुष्ट बहेलिया अपने हाथ में जाल एवं चावल के दानों को लेकर इधर आ रहा है। तुम लोग उस पर विश्वास ना करना। चावल के दानों को विषमय जानकर उस पर दृष्टिपात मत करना।
0: लघुपतनक पक्षियों को चेतावनी दे ही रहा था कि बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, फिर जाल फैलाकर चावल के दानों को बिखेर दिया और चुपचाप बैठ गया। लघुपतनक के मना करने के कारण पक्षियों में से कोई भी नहीं गया। परंतु इसी बीच चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अपने साथियों सहित इधर उधर घूमता हुआ चावल के दानों को देखने लगा।
2: हे प्रभु, कहीं ये जाल में न फंस जाए।
1: भाई कपोतराज, वहां ना जाएं। उधर जाल बिछा है। अरे रे, अरे अरे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई सुनिए। ओफो, वो सब तो जाल में फंस ही गए। दुष्ट बहेलिया कहीं का।
3: मेरे कपोत वृंद, बहेलिये के आगमन से आप सब डरे नहीं। विपदा के समय भी हमें अपनी बुद्धि एवं साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग आपस में मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलें, तो हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। चलो।
1: आश्चर्य, महाआश्चर्य, पारस्परिक संगठन से सब कुछ हो सकता है। अरे देखो तो, वो मूर्ख व्याध कैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलू, मैं भी चलकर देखता हूं कि ये कहां जा रहे हैं।
3: मित्रगण, वो बहेलिया तो थककर लौट गया। अब इस जाल को महिला रौप्य नगर के ईशान कोण की ओर ले चलते।

0: रखते हैं। वहां हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, वो हमें जाल से मुक्त करा देगा। चलो। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हिरण्यक का विवरण है। मित्र हिरण्यक, मुझ पर बड़ी विपत्ति की स्थिति आ गई है।
1: मित्र हिरण्यक,
2: ये आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आपके आगमन का कारण एवं विपदा की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहें तो जरा।
0: मित्र, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र कपोतों का राजा चित्रग्रीव हूँ। शीघ्र ही विवरण से बाहर आओ।
2: हे तात, सूर्योदय, पान, रामायण तथा महाभारत की कथा, प्रिय स्त्री तथा अच्छे मित्र हर दिन नई वस्तुओं के समान सुखकारक होते हैं। जिसके घर प्रतिदिन स्नेही मित्र आते हैं, उन मित्रों को देखकर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी वस्तु को देखने से नहीं होता। परंतु मित्र, आपकी दशा कैसे हुई?
0: अब अधिक कुछ न पूछो मित्र, अपने लालच के कारण ही हमने इस बंधन को पाया है। अब विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे पाश को काट दो।
2: ठीक है, इधर आ जाओ मित्र, मैं अब तुम्हारे पाश काटना शुरू करता हूँ।
0: नहीं हिरण्यक भाई, पहले मेरे अनुचरों को पाश मुक्त करो, उसके पश्चात मुझे।
2: महाशय, ये आपने उचित नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही भृत्यों का स्थान आता है।
0: भद्र, ऐसी बात ना कहिए, ये सभी मेरे आश्रित हैं, ये अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, क्या मैं इनका इतना भी सम्मान नहीं कर सकता? जो स्वामी अपने अनुचरों को सदा सम्मान देते हैं, उनके सेवक गण अर्थाभाव होने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। और दूसरी बात ये कि कदाचित मेरे पाश को काटते समय तुम्हारे दांत ही टूट गए या वो बहेलिया ही लौट आया, तो इनके बंधे रह जाने से मेरा नर्कवास निश्चित है।
2: धन्य महाशय, धन्य है। महाशय, मैं राजधर्म को जानता हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। जो राजा भृत्यों के प्रति करुणा का व्यवहार करता है, वो राजा तीनों ही लोगों की रक्षा करता है। आप निश्चिंत रहें, मैं पहले इन्हीं के पाश को काटूंगा।
3: ये अद्भुत घटना है, हिरण्यक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। वाह, मोक्ष का ये बहुत अच्छा उपाय है। यद्यपि मेरा स्वभाव चंचल है, फिर भी मैं इसे मित्र बनाऊंगा। इसने पूरा जाल कितनी सफाई से काट दिया, अब ये कबूतरों का झुंड चला जाए तो मैं हिरण्यक से मिलूं। लो, ये तो उड़ गए। अब मैं विवरण के पास जाता हूं। मित्र हिरण्यक, बाहर आ जाओ, अरे शीघ्र आओ।
2: ये किसकी आवाज है? क्या कोई कपोत अभी भी फंसा रह गया है? महाशय, आप कौन हैं?
3: मैं लखुपतनक नाम का काक हूँ, एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ।
2: मुझे आपसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं।
3: आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? मैंने आपको चित्रग्रीव के बंधनों को काटते हुए देखा है, तभी से मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हो गया हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कर लें।
2: नहीं नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं। परस्पर विरोधी स्वभाव वालों में भला मित्रता कैसी? आप भक्षक हैं, मैं हूँ भक्ष। मैत्री और शत्रुता बराबर वालों में ही शोभा देती है, सबल और निर्बल में मित्रता कैसी भला?
3: मित्र हिरण्यक, मैं आपके द्वार पर बैठ गया हूँ, यदि आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो यहीं पर प्राण दे दूंगा मैं।
2: अरे देखिए महाशय, अत्यंत घनिष्ठ

0: होने पर भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चाहे जितना भी गर्म हो वो आग को बुझा ही देता है। फिर आपका और हमारा तो स्वभावगत बैर है।
1: अरे भाई, अभी तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला, तो बैर कहाँ से हो गया? मेरे साथ मित्रता करने के लिए आप एक बार बाहर निकलकर मुझसे भेंट तो करें। आप भरोसा करें, मैं अत्यंत सदाशयी हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं वचन दे सकता हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं महाशय, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं है। और आश्वस्त न होने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलवानों के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
1: नीत के विषय में हिरण्यक की बुद्धि धारदार है। मित्र हिरण्यक, विद्वानों का कहना है कि एक साथ सात कदम चलने से या सात वाक्य के प्रयोग से ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इस नाते अब तुम मेरे मित्र हो चुके हो। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो विवरण के भीतर से ही तुम मेरे साथ बातचीत, गुण दोष विवेचन और सुभाषित गोष्ठी करना।
0: लघु पत्नक जी, आप बड़े चतुर एवं वाक्पटु जान पड़ते हैं। आपसे मित्रता मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे विवरण के भीतर चरण नहीं रखेंगे।
1: भद्र, मैं आपके कथनानुसार ही रहूंगा।
2: उस दिन से दोनों मित्र आपस में सुभाषित गोष्ठियों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। लघुपतनक विभिन्न प्रकार के सामिश पकवानों को लाकर स्नेहपूर्वक हिरण्यक को दिया करता। हिरण्यक भी अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों को रात्रि में एकत्रित करके प्रातःकाल गोष्ठी में आए हुए लघुपतनक को देता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक दिन लघुपतनक ने आंखों में आंसू भरकर हिरण्यक से कहा,
1: भद्र हिरण्यक, इस क्षेत्र से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
0: अरे प्रिय लघुपतनक, आपके इस मोह भंग का कारण क्या है?
1: यदि जानना चाहते हो तो सुनो। अनावृष्टि के कारण इस देश में अकाल पड़ गया है, जिस कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। तो काक के निमित्त बलि भी कोई नहीं करता। ऊपर से पक्षियों को फंसाने के लिए जाल भी फैला रखे हैं। मैं किसी तरह से बच निकला हूं, अब मुझे विदेश जाना ही है।
0: ठीक कह रहे हो मित्र, तुम तो वैसे तुम जाओगे कहाँ?
1: दक्षिण के अरण्य में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र मंत्रक नाम का कछुआ रहता है। मैं सोच रहा हूँ सुभाषित गोष्ठी के साथ अच्छे भोजन का आनंद भी लूं, यहाँ रहकर अपने साथियों का विनाश नहीं देख सकता।
0: ठीक है, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मित्र मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे भी यहाँ पर बहुत कष्ट है।
1: मैं तो आकाशगामी हूँ, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं?
0: मित्र, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
1: अरे वाह, ये तो बड़े हर्ष का विषय है मित्र। वहाँ पर हम तीनों सुख से समय व्यतीत कर पाएंगे।
2: काक की बात को सुनते ही हिरण्यक तत्काल उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गया। एक वृक्ष की कोटर में हिरण्यक को बैठाने के बाद स्वयं भी एक शाखा पर बैठकर उसने मंथरक को आवाज लगाई।
1: मित्र मंथरक,

0: मंत्रक, अरे मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं, आकर मुझसे तो मिलो।
1: अरे लघुपतनक, तुम आओ मेरे गले से लग जाओ भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। कहो इतने दिनों बाद कैसे याद आया ये मित्र?
2: पारस्परिक आलिंगन के पश्चात प्रेम पुलकित होकर दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना अपना समाचार कहने सुनने लगे। अब हिरण्यक भी आकर उनके साथ बैठ गया।
3: अरे लघुपतनक, ये चूहा कौन है? तुम्हारा भक्ष्य होने पर भी तुम उसे पीठ पर चढ़ाकर क्यों लाए हो? कोई विशेष बात?
0: मित्र, ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है।
3: अच्छा?
0: मेरे द्वितीय प्राण के समान प्रिय है मुझे।
3: ओ,
0: इनमें कई गुण हैं, अत्यंत सज्जन भी है।
3: अच्छा?
0: कुछ विशेष कारणों से विरक्त होकर तुम्हारे पास चले आए।
3: ओ,
0: और अपने स्थान का परित्याग कर दिया।
3: अच्छा, इनके वैराग्य का क्या कारण है भाई?
0: भद्र हिरण्यक, अब तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम अपने विरक्ति का कारण हम दोनों को बता दो।
4: सुनो, एक मठ में ताम्रचूर नाम का एक सन्यासी रहता था। वो भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाया करता था। भोजन से बचे अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर उसे खूंटी पर लटका दिया करता था। मुझे ज्ञात होने पर मैं अपने कुटुंबियों को लेकर प्रतिदिन भरपेट भोजन करने वहां पहुंच जाता था। एक बार सन्यासी से मिलने उनका मित्र बृहस्पति आया, परंतु सन्यासी को आतिथ्य के बजाय अपने अवशिष्ट भोजन की चिंता अधिक थी। इस कारण बृहस्पति क्रोधित हो गया। ताम्रचूर ने जब हम चूहों के उत्पात के कारण हो रही परेशानी के विषय में बताया, तो बृहस्पति ने मुझे मारने के कई तरीके अपनाए। मैं उससे दुखी हो गया। एक बार मैंने बृहस्पति के धन को चुराने का निश्चय किया, परंतु चोरी के समय वो सन्यासी जाग गया। सच कहते हैं मित्रों कि जो चीज हमारी है हमें अवश्य प्राप्त होगी।
2: मिलने वाली वस्तु मनुष्य को अवश्य मिलती है, विधाता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अतएव किसी वस्तु के विनष्ट होने पर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए और किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी होगी वो तो मिलेगी ही। इसी संदर्भ में हिरण्यक ने वणिक पुत्र की कथा सुनाई।
4: किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। एक बार उसके बेटे ने एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में लिखा था, जो वस्तु जिसे मिलने वाली होती है अवश्य मिलती है। तब उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता।
5: ये बात तो अति उत्तम है। अब मैं ना तो किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होऊंगा और ना ही अनायास मिल जाने पर आश्चर्य करूंगा, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो तो मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरे भाग्य में आने वाली वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी ही नहीं।
6: ये कौन सी पुस्तक है? इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो।
5: देखिए पिताजी, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता।
6: मूर्ख, लिखे हुए श्लोक पर इतना भरोसा? इस बुद्धि से तुम क्या कमाई करोगे? मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उद्यम नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकेगा?
5: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये श्लोक किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा रचा गया है, इसमें कुछ तो सत्य होगा ही।
6: निकल जा मेरे घर से, जा बाहर जाकर देख कि अपने भाग्य से तू क्या क्या अर्जित कर सकता है।

0: मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा मेरे घर से, जा।
1: पिता की भर्त्सना से दुखी होकर वो वणिक पुत्र उस नगर को छोड़कर दूर चला गया। जो भी उससे उसका नाम पूछता वो कहता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को ही प्राप्त करता है। तो लोगों ने उसका नाम प्राप्त व्यर्थ रख दिया। एक बार उस नगर की राजकन्या चंद्रवती अपनी सहेली कादंबरी के साथ नगर निरीक्षण के लिए निकली।
2: सखी, मौसम कितना सुहाना है, आज विहार में आनंद आ गया।
3: हाँ, आज का ये दिन ही कुछ विशेष है, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। धनी देखो, सामने से किसी राजपुत्र की सवारी आ रही है।
2: कहाँ? अरे हाँ सखी, वाह, अद्भुत सौंदर्य, क्या मनोहर रूप है। सखी, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दो ना सखी, अन्यथा कामदेव के वाणों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
3: धैर्य रखो सखी, धैर्य रखो, मैं अविलंब उस राजपुत्र से मिलकर तुम्हारे मन की बात बताती हूँ। राजकुमार की जय हो। युवराज, मैं अचिंत देश की राजकन्या चंद्रवती की सखी कादंबरी हूँ। मैं राजकन्या की ओर से कुछ निवेदन करने आई हूँ।
4: कहो कादंबरी, क्या संदेश भेजा है राजकन्या ने?
3: युवराज, राजकन्या आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मुग्ध हैं। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं। आपको देखने से उद्दाम मनोभावों ने उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय बना दी है। यदि आप शीघ्र उनके पास नहीं जाएंगे तो आत्मोत्सर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा राजकन्या के पास।
4: ये तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, परंतु कादंबरी, यदि राजकुमारी के पास पहुंचना अनिवार्य ही है तो बताओ, किस उपाय से मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकूंगा?
3: सुनिए कुमार, रात्रि के समय राज प्रासाद के नीचे लटकती हुई चमड़ी की स्थूल रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ाइएगा।
4: ठीक है कादंबरी, यही उत्तम रहेगा, मैं सही समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब जाओ।
3: जो आज्ञा।
4: ये कादंबरी क्या सत्य कह रही थी? राजकुमारी के साथ ऐसा करना अनुचित है, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा।
5: राजकुमार ने अपना निर्णय बदल लिया और इधर प्राप्त व्यर्थ घूमता हुआ उस राजमहल के समीप पहुंच गया। रात्रि में महल के झरोखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर कौतूहलवश महल पर चढ़ गया। प्राप्त व्यर्थ को ही राजकुमार समझकर राजकन्या ने उसका सत्कार किया, फिर उसके साथ विविध मनोविनोद किया।
2: हे राजपुत्र, आपके दर्शन मात्र से ही आपके प्रति आसक्त होकर मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आपको छोड़कर अब कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
6: मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु और हर स्थिति उसे मिल ही जाती है।
2: नहीं, तो आप वो राजपुत्र नहीं है? कौन है आप?
6: हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी हर वस्तु से मिल ही जाती है।

0: अभी मेरे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलवाऊंगी। निकल जाओ यहां से।
1: महल से निकलकर प्राप्त व्यर्थ नगर में भ्रमण कर ही रहा था, तभी वहां से एक बारात जा रही थी। प्राप्त व्यर्थ उस बारात में शामिल हो गया।
2: तो सुधीजन, आपने सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण

0: सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच, जागरूकता, भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस दौरान सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। यूनिफाइड सिविल कोड UCC को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। इसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है, जिसमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल AI एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ICER में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। भारतीय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25-26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु 500 रुपए शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दिन 3 दिन तक प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
3: सभी श्रोता सखियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज जब मैं आकाशवाणी आई तो सभी ने मेरे सनग्लासेस की बहुत तारीफ की। भाई, तारीफ क्यों ना करते, एकदम नए स्टाइलिश लग रहे थे। मेरी बेटी ने 3-4 दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन सेंड किए थे। उसे तो शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग करना तो आपको और हमको सभी को भाता है। बहुत उत्सुकता रहती है कि आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है ये जाना जाए, जो चीज़ ट्रेंड में है उसे खरीदा जाए। इसके लिए हम मार्केट जाते हैं। यदि हमें कोई चीज़ ऑनलाइन अच्छी दिख जाती है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। इससे कई बार हमें मार्केट से कम दामों पर ही अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो जाता है। बहनों, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, तभी तो काफ़ी फ़ायदेमंद प्रतीत होती है। बहनों, आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाएं तो उसकी गुणवत्ता की जाँच जरूर कर लें। वस्तु की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को लेकर संशय होना ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए सतर्कता जरूर बरतें। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सदैव विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें और कोशिश करें COD मोड को अपनाने की, या फिर खरीदे गए सामान का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके पैसों को सुरक्षित करने का एक बेहतर विकल्प है। बहनों, जब हम किसी कीमती सामान को ऑनलाइन मंगाते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन को जरूर चुनें। यानी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें वही उत्पाद मिले जिसका हमने भुगतान किया है। तो आगे से सखियों, ऑर्डर प्लेस करते

समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। बहनों, जिस वेबसाइट पर आप भुगतान की जानकारी दर्ज करती हैं, चेक करें कि वो आपके लेन देन को सुरक्षित रखती है या नहीं। इसके लिए एक संकेत है URL के पहले HTTPS दिखना चाहिए। सखियों, भौतिक खरीदारी में चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं, वास्तविक रंग रूप और प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बाजार जाकर घूम फिर कर मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। सखियों, मनचाही चीज़ों को बेशक खरीदिए, खूब शॉपिंग कीजिए आपकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार, कभी भी ऑफर या सेल को देखकर नहीं। अरे अरे सखिया, इन्हें तो सुनिए जरा, ये तो अपने लिए किसी और से ही शॉपिंग करवा रही हैं।

0: साई की बगावत। कहानीकार है डॉक्टर चारू चित्रा।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहुआ रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने 2 दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटेलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई थी। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देती। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहाँ तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे थे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए थी, जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही एमए की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज़ गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ, मैं इंसान। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी ज़िंदगी में, बोलो। शालिनी एकटक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कहती। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूँगी सबको, अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफ़ेद मेज़पोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ठहाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज़ कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज़ आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। اس کے ساتھ ہی شالینی کی گردن ہیرو جڑے ہار سے سج گئی۔ زور سے تالیاں بجیں۔

0: और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगीं। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी? तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा, तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज, बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने, और मुझे लगता है मैं कर अभी आगे कुछ कह पाती। उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं, यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया, और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी, आप कैसे हैं? आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर, कृतज्ञ हूं मैं। आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूं मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में किलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज, ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है? शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे, कहीं से फिट हो रहा है वह इस पार्टी में? रुआंसी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे? जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो? आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में खड़ा था, जहां जब तब दस्ताने चढ़ा, कैंची, कटर, तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है, और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल, मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर, और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनसाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनसाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ, इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो, उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनसाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है, टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनसाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो, अजंता, एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनसाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो, उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी काट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी कहानी बोनसाई की बगावत। सखियों, भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को सभ्य बनाया, लेकिन उसे सुसंस्कृत नहीं बनाया। उसके लिए अंतः जीवन के मूल्यों को खो

कुछ निकालना होगा। ये कहना था पंत जी का। वे एक नई मानवीय संस्कृति को आगे लेकर आए। श्री सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के आधार स्तंभ थे। उनकी सोच स्त्रियों के लिए देह से कहीं ऊपर थी। वे कहते थे कि जिस प्रकार फूल अपने हृदय का सौरभ सभी को देता है, उसी प्रकार स्त्री को भी अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। उसका सौंदर्य उसकी देह नहीं वरन उसकी भावनाएं हैं जो हृदय रूपी तिजोरी में बंद हैं। बहनों, इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अब सुनाती हूँ आपको पंत जी की एक रचना। बहनों, चाहे कलियों का खिलना हो या तितली का उड़ना, पंत जी ने अपने ही ढंग से प्रदर्शित किया है। नीली पीली ओ चटकीली पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले, नीली पीली ओ चटकीली पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले, प्रिय तितली फूल सी हो फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, तुम मधु की कुसुमित अपसरी सी उड़ उड़ फूलों को बरसाती, तुम मधु की कुसुमित अपसरी सी उड़ उड़ फूलों को बरसाती, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, किस मधुर गीत लय में जाती। तितली रंग बिरंगे फूलों पर बैठती है और उन्हीं फूलों से मधुमक्खी रस चूसती है। जब मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाती है तो उसका रस अवशोषित करती है और अपने अथक प्रयासों के बाद इन्हीं फूलों के रस को बदल देती है मीठे मीठे रस में, यानी शहद में। बहनों, आज हम धन्यवाद करते हैं शहद की रानी यानी मधुमक्खियों का, जिनका प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पॉलिनेशन भी करती हैं, यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। सखियों, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। प्रकृति में सभी का अपना विशेष महत्व है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, फूल पत्तियां या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को जीवंतता दे रहे हैं। और पंत जी की रचनाएं सुनकर तो यूं लगता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में समाहित होकर गुनगुना रहे हैं।

सखियों कलियों के खिलने से, भंवरों के गुंजन से और फूलों पर मधुमक्खियों के मंडराने से जन्म होता है मधुरस यानी शहद का। बोलते ही जुबान पर मिठास घुल गई ना। बहनों, शहद एक प्राकृतिक औषधि है, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी। प्राचीन काल से ही घावों को भरने में शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, त्वचा को निखारता है। तभी तो हम और आप अपने फेस पैक में भी इसे मिलाते हैं। शहद त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, पाचन में सुधार करता है, साथ ही पुरानी खांसी के लिए तो ये रामवाण माना गया है। शहद का प्रयोग हम सभी करते हैं, पर बहनों, इसके ढेरों फायदे हमारे लिए तभी लाभकारी हैं जब इसका सही प्रकार से सेवन किया जाए। बहनों, फेस पैक हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमें स्मार्ट बनाता है। गर्भवती महिलाओं को शहद का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि हम लगातार ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है, तो ख्याल रखिए, क्योंकि शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होता ही है, जो शक्कर का प्राकृतिक रूप है। सखियों, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि शहद का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर ये एक भ्रांति है। रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि यदि हम लगभग 2 बड़े चम्मच शहद का सेवन नियमित रूप से 8 सप्ताह तक करते हैं तो इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। शहद का सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। वे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात में गुनगुने दूध के साथ शहद का सेवन करते हैं तो कुछ लोग सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू के रस के साथ शहद लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलने लगती है और हम हो जाते हैं स्लिम ट्रिम यानी स्मार्ट वुमेन। तो सखियों, आप भी स्मार्ट बनिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त, तो अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, एक सूचना है आपके लिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ये जानकारी हम आपको दे दें। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय संगठन, राजनीतिक दल, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों

को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिससे पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाती है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके इसलिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उससे सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसलिए भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्तेजात्मक भाषण दिए जाएंगे जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुपत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना या करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार अस्त्र शस्त्र विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय संगठन राजनीतिक दल समिति प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक परिसर पर किसी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले पर संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब

0: संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना।

0: मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।
5: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सागर फिल्म का ये गीत है। एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म जबरदस्त के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रिभोज दिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की भी समीक्षा होगी। इस दौरे में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लंबी समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है, इससे जरूरी फेरबदल आसान होंगे। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया
1: कि इस वर्ष में मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे और बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में AI आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। सिंहस्थ 2028 के लिए स्मार्ट भीड़ प्रबंधन और AI पुलिसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया और सिंगापुर से आए वैश्विक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां सिकल सेल और थैलीसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और जरूरतमंदों को हितलाभ भी बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत आज पहली बार शहडोल पहुंच रहे हैं। वे ट्रेन से कटनी आएंगे और फिर सड़क मार्ग से शहडोल पहुंचेंगे। 3 दिन के इस प्रवास में उनका मुख्य कार्यक्रम पांडव नगर के सरस्वती स्कूल में होगा, जहां 300 से ज्यादा शिक्षार्थियों के साथ बौद्धिक शिविर आयोजित है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है।

है और न ही कोई जवाबदेही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ा है जो रोजाना के दवाओं के लिए पूरी तरह रिटेल दुकानों पर निर्भर हैं। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधि क्रिस्टल आईटी पार्क और पीतमपुर की सिप्ला कंपनी का दौरा भी करेंगे। प्रदेश में गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा और ग्वालियर में भी पहली बार 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की इटारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में निश्चय पोषण योजना के तहत 12 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। नीमच में कल 21 मई शासकीय आईटीआई मनासा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर में भव्य गीता भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में

0: समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार

0: दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत

0: की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। इसमें श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं हम कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा की। अनिल कामले, नेहा फणसे, सीमा, सबीहा, सुषमा, स्लीमा, पूजा, गुमास्ता नगर इंदौर से अपनी पसंद हमें भेजते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की ये पसंद है। गिरफ्तार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार, आशा भोसले का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत लिखा है, बप्पी लहरी की धुन है।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ फिल्म अलग का अलग का ये गीत सुनना चाहते हैं। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजीम गुड़िया और मोहम्मद अब्दुल बाबा अनजाना। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। ग्राम बगबड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका, प्रोनोका और उत्कर्ष नेताम की। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की पसंद पर। फिल्म अलग अलग का ये गीत किशोर कुमार ने गाया है। आनंद बख्शी का गीत लिखा, आर डी बर्मन की धुन है।

दर्शन शामिल कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां की लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया प्रमीला बामनिया नंदिनी मुस्कान नीलम सावन कृष्ण कुमार ऋतिक कृणाल केतन और समस्त बामनिया परिवार उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा मनीष वर्मा शिवम वर्मा मेंढकी रोड से राघू सिंह कुमावत राजकुमार कुमावत अभिषेक कुमावत की और राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल शांति महाजन मुकेश महाजन की जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन महेंद्र जैन सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की गुलामी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है लता मंगेशकर का गाया हुआ धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बोल लिखे हैं गुलजार ने

कोटवा नारायणपुर से अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिहा नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, अश्विनी रोशनी राय और प्रांजल राय की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजू बाई, रोजू बाई तड़वी, परु मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारीकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुनना पसंद किया है बप्पी लाहरी के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, भूपिंदर और आशा भोसले का गाया फिल्म एतबार से ये गीत है।

0: फिल्म एतबार का ये गीत था, आशा भोसले और भूपिंदर ने इसे गाया था, हसन कमाल का लिखा और बप्पी लहरी की धुन थी। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस मैदान में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस मैदान में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। आज रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक प्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। लेखिका श्रीमती मधु राजन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में सुनिएगा पंडित एमएस गोपाल कृष्ण का वायलिन पर बजाया राग भोपाली। आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी संध्याकालीन प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने को है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम पुनः हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ।

इस गहलाई गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे मिष्कांत गौतम के गाए कुछ लोकगीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए कुछ भजन।

0: साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: राग तेलंग
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। मेरी जंग फिल्म का यह गीत है। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश ने गाया है। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

0: ये फादर का बच्चा कार्ड है।
1: फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

ए गोरा, सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में देव कोहली का लिखा गीत आपने सुना। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी मैंने प्यार किया।

0: आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत था। अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण ने इसे गाया था। फिल्म थी लाल दुपट्टा मलमल का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत की। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला के संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। और प्रदेश के उधोदास मेहता सेंट्रल साइंस सेंटर में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। कप्तान स्वीटी कुझूर समेत दिया, प्रियंका मेंच और नौशीन नाज ने गोल दागे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

0: उल्लास मेहता सेंट्रल साइंस सेंटर में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। कप्तान स्वीटी कुजूर समेत दिया प्रियंका मेंच और नौशीन नाज ने गोल दागे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

गज़ल सुन रहे थे जिसमें कलाम था अजहर सईद का। दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में मौजूआत की एक दुनिया आबाद है। ख़ासकर उन्होंने जिन मौजूआत को अपनी नज़मों का हिस्सा बनाया, उनका ताल्लुक अवामी ज़िंदगी से है। अवाम में उठना बैठना उनका ख़ास मशगला था। यही वजह है कि अवाम की ज़िंदगी के हर पहलू की बारीकियों से वाकिफ थे। उन्होंने अपनी नज़मों में इसका बखूबी फ़ायदा उठाया है और आम इंसानों के जज्बात व एहसासात, मुख्तलिफ इंसानी ज़िंदगी के मसाइल व मामलात, मुख्तलिफ समाजी व माशरती हालात, गर्ज़ ये कि इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी नज़मों में शामिल किया है और आवाम के सामने उन्हीं की सच्ची हकीकी और जीती जागती तस्वीर पेश की है। ख़ासकर निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम उनकी नज़मों का हिस्सा हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश की है। इस सिलसिले में उनकी नज़म मुफलिसी, जो माशी बदहाली पर मबनी है, काबिले ज़िक्र है, जिसे काफ़ी मकबूलियत मिली। नज़ीर अकबर आबादी ने अमीर और गरीब के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को भी मिटाने की कोशिश की है। माशरे में अवाम को तबकात में मुनकसिम करना उनको नापसंद था। यही वजह है कि उन्होंने जब इस फ़र्क को महसूस किया तो अमीर तबके के हवाले से उन्होंने मौत का ज़िक्र ज़रूर किया है कि मरने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं। नज़्म बंजारा नामा में उसकी सच्ची तस्वीर कशी की गई है। इसी तरह नज़्म आदमी नामा में उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है और आपसी तफरीक को मिटाने पर जोर दिया है। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में एक ख़ास पहलू जो सबसे ज़्यादा काबिले तवज्जो है, वो है उनका मकामी रंग। ख़ासकर मेले ठेले, हिंदू मुस्लिम त्यौहार, खेल कूद तमाशे वगैरह जैसे मौजूआत की कसरत है। इसी तरह मौसम, फ़िज़ा, मकाम और माहौल वगैरह की बेहतर अक्कासी भी उनकी नज़मों में मौजूद है। यही नहीं बल्कि उनकी नज़मों में अख़लाक़ी बातें, नसीहत आमेज़ बातें और तसव्वुफ़ के मज़ामीन की भी कसरत है। महज इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े, गर्ज़ ये कि हिंदुस्तान की मिट्टी पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात से उनको मोहब्बत थी। नज़ीर ने इन तमाम को अपनी नज़मों में जगह दी है। होली, दिवाली, राखी, बसंत, बलदेव जी का मेला, महादेव का ब्याह, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, आगरे की तैराकी, उर्स हज़रत सलीम चिश्ती, शब बारात, ईद, जाड़ा, बरसात की बहारें, ताज महल, तरबूज, तिल के लड्डू वगैरह उनकी मकबूल नज़में हैं। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी के मौजू पर बातचीत को जारी रखते हुए आइए हम सुनते हैं अपने प्रोग्राम की अगली पेशकश में एक और गज़ल। गुलूकार हैं आदित्य सिंह गौर और कलाम है अहद प्रकाश का। कतरा कतरा बहते हैं, तन्हा तन्हा रहते हैं। समात फरमाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।

0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।
2: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक पंचतंत्र की सातवीं कड़ी।

0: नमस्कार श्रोतागण, पंचतंत्र के इस महासमुद्र में कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं पंचतंत्र का द्वितीय प्रकरण, मित्र संप्राप्ति। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को कुछ यूं सुनाया। असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः,
1: असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः, साधयन्त्याशु कार्याणि काकाकुमृग कूर्मवत्। प्रियवत्सगण, विद्वान बहुश्रुत एवं बुद्धिमान साधनों के अभाव में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कौवे, चूहे, हिरण और कछुए ने मिलकर अपने कार्यों को सिद्ध कर लिया। लो सुनो, दक्षिण के किसी राज्य में एक विशाल सा वृक्ष था, जिसके फलों को पक्षी मुक्त रूप से खाया करते थे। उसके कोटर में अनेक कीट निवास करते थे। दूर दूर से आने वाले पथिक उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया करते थे। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा निवास करता था। एक बार वो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था।
2: दिन चढ़ाया, अभी तक एक दाना भी नहीं जुटा पाया। भूख के कारण दशा दयनीय हो रही है। अरे अरे, ये क्रूर ऊर्ध्वकेशी यम के आकार का कौन मनुष्य इधर आ रहा है? ये तो बहेलिया है। ये दुष्ट अवश्य ही मेरे वट वृक्ष की ओर आ रहा है। हे प्रभु, ये मेरे साथियों को जाल में फंसा लेगा। मैं शीघ्र जाकर उन्हें सावधान करता हूं। मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। एक दुष्ट बहेलिया अपने हाथ में जाल एवं चावल के दानों को लेकर इधर आ रहा है। तुम लोग उस पर विश्वास ना करना। चावल के दानों को विषमय जानकर उस पर दृष्टिपात मत करना।

0: लघु पतनक पक्षियों को चेतावनी दे ही रहा था कि बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, फिर जाल फैला कर चावल के दानों को बिखेर दिया और चुपचाप बैठ गया। लघु पतनक के मना करने के कारण पक्षियों में से कोई भी नहीं गया। परंतु इसी बीच चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अपने साथियों सहित इधर उधर घूमता हुआ चावल के दानों को देखने लगा।
1: हे प्रभु, कहीं ये जाल में न फंस जाए। भाई कपोतराज वहां ना जाए, उधर जाल बिछा है। अरे रे, अरे अरे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, ओफो, वो सब तो जाल में फंस ही गए। दुष्ट बहेलिया कहीं का।
2: मेरे कपोत वृंद, बहेलिये के आगमन से आप सब डरे नहीं। विपदा के समय भी हमें अपनी बुद्धि एवं साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग आपस में मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलें, तो हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। चलो।
1: आश्चर्य, महा आश्चर्य, पारस्परिक संगठन से सब कुछ हो सकता है। अरे देखो तो, वो मूर्ख व्याध कैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलो मैं भी चलकर देखता हूं कि ये कहां जा रहे हैं।
2: मित्रगण, वो बहेलिया तो थककर लौट गया। अब इस जाल को महिला रौप्य नगर के ईशान कोण की ओर ले चलते हैं। वहां हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, वो हमें जाल से मुक्त करा देगा। चलो। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हिरण्यक का विवरण है। मित्र हिरण्यक, मुझ पर बड़ी विपत्ति की स्थिति आ गई है।
3: मित्र हिरण्यक,
4: ये आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आपके आगमन का कारण एवं विपदा की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहें तो जरा।
2: मित्र, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र कपोतों का राजा चित्रग्रीव हूँ। शीघ्र ही विवरण से बाहर आओ।
4: हे तात, सूर्योदय, पान, रामायण तथा महाभारत की कथा, प्रिय स्त्री तथा अच्छे मित्र हर दिन नई वस्तुओं के समान सुखकारक होते हैं। जिसके घर प्रतिदिन स्नेही मित्र आते हैं, उन मित्रों को देखकर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी वस्तु को देखने से नहीं होता। परंतु मित्र, आपकी दशा कैसे हुई?
2: अब अधिक कुछ न पूछो मित्र, अपने लालच के कारण ही हमने इस बंधन को पाया है। अब विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे पाश को काट दो।
4: ठीक है, इधर आ जाओ मित्र, मैं अब तुम्हारे पाश काटना शुरू करता हूँ।
2: नहीं हिरण्यक भाई, पहले मेरे अनुचरों को पाश मुक्त करो, उसके पश्चात मुझे।
4: महाशय, ये आपने उचित नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही भृत्यों का स्थान आता है।
2: भद्र, ऐसी बात ना कहिए, ये सभी मेरे आश्रित हैं। ये अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, क्या मैं इनका इतना भी सम्मान नहीं कर सकता? जो स्वामी अपने अनुचरों को सदा सम्मान देते हैं, उनके सेवक गण अर्थाभाव होने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। और दूसरी बात ये कि कदाचित मेरे पाश को काटते समय तुम्हारे दांत ही टूट गए या वो बहेलिया ही लौट आया, तो इनके बंधे रह जाने से मेरा नर्कवास निश्चित है।
4: धन्य महाशय, धन्य है। महाशय, मैं राजधर्म को जानता हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। जो राजा भृत्यों के प्रति करुणा का व्यवहार करता है, वो राजा तीनों ही लोगों की रक्षा करता है। आप निश्चित

0: निश्चिंत रहें, मैं पहले इन्हीं के पाश को काटूंगा।
1: ये अद्भुत घटना है, हिरण्यक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। वाह, मोक्ष का ये बहुत अच्छा उपाय है। यद्यपि मेरा स्वभाव चंचल है, फिर भी मैं इसे मित्र बनाऊंगा। इसने पूरा जाल कितनी सफाई से काट दिया, अब ये कबूतरों का झुंड चला जाए तो मैं हिरण्यक से मिलूं। लो, ये तो उड़ गए। अब मैं विवर्ण के पास जाता हूं। मित्र हिरण्यक, बाहर आ जाओ, अरे शीघ्र आओ।
0: ये किसकी आवाज है? क्या कोई कपोत अभी भी फंसा रह गया है? महाशय, आप कौन हैं?
1: मैं लखुपतनक नाम का काक हूँ, एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ।
0: मुझे आपसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं।
1: आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? मैंने आपको चित्रग्रीव के बंधनों को काटते हुए देखा है, तभी से मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हो गया हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कर लें।
0: नहीं नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं। परस्पर विरोधी स्वभाव वालों में भला मित्रता कैसी? आप भक्षक हैं, मैं हूँ भक्ष। मैत्री और शत्रुता बराबर वालों में ही शोभा देती है, सबल और निर्बल में मित्रता कैसी भला?
1: मित्र हिरण्यक, मैं आपके द्वार पर बैठ गया हूँ, यदि आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो यहीं पर प्राण दे दूंगा मैं।
0: अरे देखिए महाशय, अत्यंत घनिष्ठ होने पर भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चाहे जितना भी गर्म हो वो आग को बुझा ही देता है, फिर आपका और हमारा तो स्वभावगत बैर है।
1: अरे भाई, अभी तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला, तो बैर कहाँ से हो गया? मेरे साथ मित्रता करने के लिए आप एक बार बाहर निकलकर मुझसे भेंट तो करें। आप भरोसा करें, मैं अत्यंत सदाशयी हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं वचन दे सकता हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं महाशय, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं है, और आश्वस्त न होने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलवानों के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
1: नीत के विषय में हिरण्यक की बुद्धि धारदार है। मित्र हिरण्यक, विद्वानों का कहना है कि एक साथ सात कदम चलने से या सात वाक्य के प्रयोग से ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इस नाते अब तुम मेरे मित्र हो चुके हो। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो विवरण के भीतर से ही तुम मेरे साथ बातचीत, गुण दोष विवेचन और सुभाषित गोष्ठी करना।
0: लघुपतनक जी, आप बड़े चतुर एवं वाक्पटु जान पड़ते हैं। आपसे मित्रता मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे विवरण के भीतर चरण नहीं रखेंगे।
1: भद्र, मैं आपके कथनानुसार ही रहूंगा।
2: उस दिन से दोनों मित्र आपस में सुभाषित गोष्ठियों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। लघुपतनक विभिन्न प्रकार के सामिश पकवानों को लाकर स्नेहपूर्वक हिरण्यक को दिया करता। हिरण्यक भी अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों को रात्रि में एकत्रित करके प्रातःकाल गोष्ठी में आए हुए लघुपतनक को देता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक दिन लघुपतनक ने आंखों में आंसू भरकर हिरण्यक से कहा,
1: भद्र हिरण्यक, इस क्षेत्र से मेरा मोह भंग हो गया है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
0: अरे प्रिय लघुपतनक,

0: अभंग का कारण क्या है?
1: यदि जानना चाहते हो तो सुनो। अनावृष्टि के कारण इस देश में अकाल पड़ गया है, जिस कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। तो काक के निमित्त बलि भी कोई नहीं करता, ऊपर से पक्षियों को फंसाने के लिए जाल भी फैला रखे हैं। मैं किसी तरह से बच निकला हूं, अब मुझे विदेश जाना ही है।
0: ठीक कह रहे हो मित्र, तुम तो वैसे तुम जाओगे कहाँ?
1: दक्षिण के अरण्य में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां मेरा घनिष्ठ मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। मैं सोच रहा हूं सुभाषित गोष्ठी के साथ अच्छे भोजन का आनंद भी लूं, यहां रहकर अपने साथियों का विनाश नहीं देख सकता।
0: ठीक है, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मित्र मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी यहाँ पर बहुत कष्ट है।
1: मैं तो आकाशगामी हूँ, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं?
0: मित्र, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
1: अरे वाह, ये तो बड़े हर्ष का विषय है मित्र, वहाँ पर हम तीनों सुख से समय व्यतीत कर पाएंगे।
2: काक की बात को सुनते ही हिरण्यक तत्काल उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गया। एक वृक्ष की कोटर में हिरण्यक को बैठाने के बाद स्वयं भी एक शाखा पर बैठकर उसने मंथरक को आवाज लगाई।
1: मित्र मंथरक, मंथरक, अरे मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं, आकर मुझसे तो मिलो।
3: अरे लघुपतनक, तुम? आओ मेरे गले से लग जाओ भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। कहो, इतने दिनों बाद कैसे याद आया ये मित्र?
2: पारस्परिक आलिंगन के पश्चात प्रेम पुलकित होकर दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना अपना समाचार कहने सुनने लगे। अब हिरण्यक भी आकर उनके साथ बैठ गया।
4: अरे लघुपतनक, ये चूहा कौन है? तुम्हारा भक्ष्य होने पर भी तुम उसे पीठ पर चढ़ाकर क्यों लाए हो? कोई विशेष बात?
1: मित्र, ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है।
4: अच्छा?
1: मेरे द्वितीय प्राण के समान प्रिय है मुझे।
4: ओ,
1: इनमें कई गुण हैं, अत्यंत सज्जन भी है।
4: अच्छा?
1: कुछ विशेष कारणों से विरक्त होकर तुम्हारे पास चले आए।
4: ओ,
1: और अपने स्थान का परित्याग कर दिया।
4: अच्छा, इनके वैराग्य का क्या कारण है भाई?
1: भद्र हिरण्यक, अब तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम अपने विरक्ति का कारण हम दोनों को बता दो।
0: सुनो, एक मठ में ताम्रचूर नाम का एक सन्यासी रहता था। वो भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाया करता था। भोजन से बचे अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर उसे खूंटी पर लटका दिया करता था। मुझे ज्ञात होने पर मैं अपने कुटुंबियों को लेकर प्रतिदिन भरपेट भोजन करने वहां पहुंच जाता था। एक बार सन्यासी से मिलने उनका मित्र बृहस्पति आया, परंतु सन्यासी को आतिथ्य के बजाय अपने अवशिष्ट भोजन की चिंता अधिक थी। इस कारण बृहस्पति क्रोधित हो गया। ताम्रचूर ने जब हम चूहों के उत्पात के कारण हो रही परेशानी के विषय में बताया, तो बृहस्पति ने मुझे मारने के कई तरीके अपनाए। मैं उससे दुखी हो गया। एक बार मैंने बृहस्पति के धन को चुराने का निश्चय किया, परंतु चोरी के समय वो सन्यासी जाग गया। सच कहते हैं मित्रों,

0: जो चीज हमारी है हमें अवश्य प्राप्त होगी।
1: मिलने वाली वस्तु मनुष्य को अवश्य मिलती है, विधाता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अतएव किसी वस्तु के विनष्ट होने पर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए और किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी होगी वो तो मिलेगी ही। इसी संदर्भ में हिरण्यक ने वणिक पुत्र की कथा सुनाई।
0: किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। एक बार उसके बेटे ने एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में लिखा था, जो वस्तु जिसे मिलने वाली होती है अवश्य मिलती है। तब उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता।
2: ये बात तो अति उत्तम है। अब मैं ना तो किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होऊंगा और ना ही अनायास मिल जाने पर आश्चर्य करूंगा, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो तो मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरे भाग्य में आने वाली वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी ही नहीं।
3: ये कौन सी पुस्तक है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो?
2: देखिए पिताजी, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता।
3: मूर्ख, लिखे हुए श्लोक पर इतना भरोसा? इस बुद्धि से तुम क्या कमाई करोगे? मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उद्यम नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकेगा?
2: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये श्लोक किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा रचा गया है, इसमें कुछ तो सत्य होगा ही।
3: निकल जा मेरे घर से, जा बाहर जाकर देख कि अपने भाग्य से तू क्या क्या अर्जित कर सकता है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा मेरे घर से, जा।
0: पिता की भर्त्सना से दुखी होकर वो वणिक पुत्र उस नगर को छोड़कर दूर चला गया। जो भी उससे उसका नाम पूछता वो कहता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को ही प्राप्त करता है। तो लोगों ने उसका नाम प्राप्त व्यर्थ रख दिया। एक बार उस नगर की राजकन्या चंद्रवती अपनी सहेली कादंबरी के साथ नगर निरीक्षण के लिए निकली।
4: सखी, मौसम कितना सुहाना है, आज विहार में आनंद आ गया।
5: हाँ, आज का ये दिन ही कुछ विशेष है, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। धनी देखो, सामने से किसी राजपुत्र की सवारी आ रही है।
4: कहाँ? अरे हाँ सखी, वाह, अद्भुत सौंदर्य, क्या मनोहर रूप है। सखी, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दो ना सखी, अन्यथा कामदेव के वाणों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
5: धैर्य रखो सखी, धैर्य रखो, मैं अविलंब उस राजपुत्र से मिलकर तुम्हारे मन की बात बताती हूँ। राजकुमार की जय हो। युवराज, मैं अचिंत्य देश की राजकन्या चंद्रवती की सखी कादंबरी हूँ। मैं राजकन्या की ओर से कुछ निवेदन करने आई हूँ।
6: कहो कादंबरी, क्या संदेश भेजा है राजकन्या ने?
5: युवराज, राजकन्या आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मुग्ध हैं। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं। आपको देखने से उद्दाम मनोभावों ने उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय बना दी है। यदि आप शीघ्र उनके पास नहीं जाएंगे तो आत्मोत्सर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा राजकन्या के पास।
6: ये तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, परंतु कादंबरी, यदि राजकुमारी के पास पहुंचना अनिवार्य ही है तो बताओ किस उपाय से मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकूंगा?
5: सुनिए कुमार, रात्रि के समय राज प्रासाद के नीचे लटकती हुई चमड़े की स्थूल रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ाइएगा।
6: ठीक है कादंबरी, यही उत्तम रहेगा, मैं सही समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब जाओ।
5: जो आज्ञा।
6: ये कादंबरी

0: मैं सत्य कह रही थी, राजकुमारी के साथ ऐसा करना अनुचित है। मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा।
1: राजकुमार ने अपना निर्णय बदल लिया और इधर प्राप्त व्यर्थ घूमता हुआ उस राजमहल के समीप पहुंच गया। रात्रि में महल के झरोखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर कौतूहलवश महल पर चढ़ गया। प्राप्त व्यर्थ को ही राजकुमार समझकर राजकन्या ने उसका सत्कार किया, फिर उसके साथ विविध मनोविनोद किया।
2: हे राजपुत्र, आपके दर्शन मात्र से ही आपके प्रति आसक्त होकर मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आपको छोड़कर अब कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
3: मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु और हर स्थिति उसे मिल ही जाती है।
2: नहीं, तो आप वो राजपुत्र नहीं है? कौन है आप?
3: हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी हर वस्तु से मिल ही जाती है।
2: दुष्ट, अभी मेरे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलवाऊंगी। निकल जाओ यहां से।
4: महल से निकलकर प्राप्त व्यर्थ नगर में भ्रमण कर ही रहा था, तभी वहां से एक बारात जा रही थी। प्राप्त व्यर्थ उस बारात में शामिल हो गया।
1: तो सुधीजन, आपने सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है, परंतु बारात में इस बात की पुष्टि हुई या नहीं, ये हम सुनाएंगे 8वीं कड़ी में, अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। कीजिए इंतजार। नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र का सातवां भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2047 के तहत जाति गणना कराने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2047 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस साल 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमीर राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

शहर वही रहते हैं, फ़र्क बस लोगों से पड़ता है। कहीं राहें आसान हो जाती हैं तो कहीं सफ़र मुश्किल बनता है। ये सब बड़े नियमों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से तय होता है। जब हम बिना कहे सही करना चुन लें तो हर जगह थोड़ी बेहतर लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता शर्मा और आप सुन रहे हैं युववाणी। आज सुबह की ही बात है, मैं घर से निकली, थोड़ी जल्दी में थी लेकिन मन हल्का खुश था। ऐसा लगा कि आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, मेरी नज़र सामने पड़े कचरे पर गई। किसी ने रात में ही उसे सड़क पर डाल दिया था और अब वो उधर उधर फैल रहा था। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई और सोचने लगी कि ये सब इतना कॉमन कैसे हो गया कि अब हमें ये गलत भी नहीं लगता। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक स्कूल बस खड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे उतर रहे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ अपना बैग संभालते हुए। लेकिन पीछे से गाड़ियाँ लगातार हॉर्न बजा रही थीं, जैसे 2 मिनट रुकना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो। उस मोमेंट में मुझे अजीब सा लगा कि हम सबको जल्दी तो है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस जल्दी में हम क्या खो रहे हैं। फिर मैं ट्रैफिक सिग्नल पर पहुँची। सिग्नल पर रेड लाइट थी, मैंने गाड़ी रोकी। फिर मेरे साथ 2-3 लोग और रुके थे लेकिन बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए हों, सबके लिए नहीं। उस समय मन में एक सवाल आया कि क्या ये सच में इतनी छोटी बात है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर दें, या ये वही चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को आसान या मुश्किल बनाती हैं। हम अक्सर बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमें लगता है कि समाज बदलने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, वही आदतें जो हम

हमें बिना सोचे करते हैं, वही आदतें जो हमें लगती हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी, शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी, कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बहुत शांत था लेकिन अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में किसी ने चिप्स का पैकेट खाकर वहीं छोड़ दिया, फिर किसी और ने भी वैसा ही किया। धीरे धीरे वही जगह गंदी लगने लगी। उस पल मुझे समझ आया कि गंदगी एक बार में नहीं फैलती, वो धीरे धीरे हमारी आदतों से बढ़ती है।

हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा फ़र्क रोक देती है, क्योंकि अगर हर कोई यही सोचेगा तो कोई शुरुआत ही नहीं करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सोच बदल ले तो धीरे धीरे पूरा माहौल बदल सकता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति बस इतना ध्यान रखे कि वो कचरा सही जगह डाले, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, पब्लिक प्लेसेस पर शांति बनाए रखें और दूसरों का ध्यान रखें, तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे पावरफुल चीज़ है, क्योंकि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं और हमारी हर छोटी आदत किसी न किसी को प्रभावित करती हैं। अब ज़रा एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या हम हमेशा सही करते हैं? शायद नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है, हम परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम बेहतर बन सकते हैं और वही सबसे ज़रूरी है। अगर हम हर दिन बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अपने छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान देने लगें, तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो हमें अलग से कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, सही करना अपने आप होने लगेगा। हम जिस जगह रहते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम उसे अपना मान लेते हैं तो हम खुद ही उसका ख्याल रखने लगते हैं। फिर हमें कोई नियम याद नहीं दिलाना पड़ता और कोई रोकना भी नहीं पड़ता। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? शायद यही छोटा सा सवाल एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

दोस्तों, आज के समय में एक और चीज़ है जो हमारी आदतें और हमारे व्यवहार और धीरे धीरे हमारी पूरी सोशल लाइफ को बदल रही है, और वो है मोबाइल फ़ोन। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरी चीज़ है, सच कहूँ तो शायद आज इसके बिना ज़िंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल है। सुबह अलार्म से लेकर रात की आखिरी नोटिफिकेशन तक हमारी दिनचर्या कहीं ना कहीं मोबाइल के आसपास घूमती है। हम उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। लेकिन कभी कभी यही मोबाइल हमें उन लोगों से दूर भी कर देता है जो हमारे सबसे पास होते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक ही घर में चार लोग बैठे हैं लेकिन कमरे में साइलेंस होता है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है। कोई रील्स देख रहा होता है, कोई चैट्स में बिजी होता है, कोई गेम्स खेल रहा होता है और धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है। पहले शाम को लोग छत पर बैठते थे, पड़ोसियों से बातें करते थे, बच्चे बाहर खेलते थे और परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे। अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हैं। कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ एक फैमिली बैठी थी, माँ पापा और दो बच्चे। सबके सामने खाना था लेकिन किसी के बीच बातचीत नहीं थी। माँ फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, पापा कॉल्स में बिजी थे और बच्चे गेम्स खेल रहे थे। उस पूरे टेबल पर बस फ़ोन्स एक्टिव थे, लोग नहीं। तब मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करने आई थी, लेकिन कई बार हम उसी की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे मोबाइल हमारे सोशल बिहेवियर को बदलने लगता है। आज कई लोग सामने बैठकर बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं लेकिन घंटों टेक्स्टिंग कर सकते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि स्क्रीन के पीछे इमोशंस फील नहीं करने पड़ते। लेकिन असली ज़िंदगी में लोगों की आंखें पढ़नी होती हैं, उनकी फीलिंग समझनी पड़ती हैं और उनके साइलेंस को भी सुनना पड़ता है। यही असली सोशल बिहेवियर होता है। अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा हो और हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहें तो उसे लगता है कि उसकी बात इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करने लगती हैं। बच्चों पर भी असर साफ दिखाई देता है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, दोस्तों से लड़ते थे,

और फिर मान भी जाते थे। उन्हें रियल इमोशंस और रिलेशनशिप नेचुरली समझ आते थे। लेकिन अब कई बच्चे घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं। मोबाइल गेम्स और वीडियोस ने आउटडोर गेम्स की जगह ले ली है। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन भी कम होने लगता है। धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और रियल कन्वर्जेशंस ऑकवर्ड लगने लगती हैं। कई इमोशंस अब सिर्फ इमोजीज तक सीमित रह गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई वीडियो कॉल उस एहसास को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती जो किसी अपने के पास बैठने में होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मोबाइल फ़ोन छोड़ देने चाहिए। टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है। अगर मोबाइल को ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर वही हमारी पूरी दुनिया बन जाए तो कहीं ना कहीं हम असली दुनिया से दूर होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी फ़ोन को साइड में रखकर अपने आसपास के लोगों को समय दिया जाए, फैमिली के साथ बैठकर बिना नोटिफिकेशंस की बातें की जाएं, दोस्तों से सिर्फ फ़ोटोज़ लेने के लिए नहीं बल्कि मोमेंट्स फील करने के लिए मिला जाए, और किसी से बात करते समय उसे पूरा अटेंशन दिया जाए, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स से नहीं अटेंशन से भी दिखती है।

शायद आज के समय में किसी को अपना समय देना सबसे बड़ी वैल्यू बन चुका है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आखिर में यादें फ़ोन्स में सेव नहीं होती, वो दिल में बनती हैं। और असली कनेक्शन वही होता है जहाँ नेटवर्क नहीं, लोग जुड़े होते हैं। दोस्तों, आज की इस बातचीत में बस इतना ही। कभी सड़कों की भागदौड़ में, तो कभी मोबाइल के स्क्रीन्स के पीछे, हम धीरे धीरे उन छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती हैं। लेकिन शायद ज़िंदगी अब भी वही खूबसूरत लगती है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो अगली बार जब आपके हाथ में फ़ोन हो या आप किसी भीड़ का हिस्सा हों, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कनेक्टेड हूँ या सच में किसी से जुड़े भी हैं? क्योंकि आखिर में यादें स्क्रीन्स में नहीं, दिलों में बसती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त ललिता शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर।

0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये प्यारा सा गीत। अन्वेषा, विनीत सिंह और साथियों की आवाज़ में इरशाद कामिल के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत।

आपके रेडियो सेट पर आ रहा है फिल्म ओम शांति ओम का ये नगमा। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिथुन के गीत संगीत से सजा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुल्तान फिल्म का गीत पापॉन की आवाज़ में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत विशाल शेखर का।

सुल्तान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की

0: बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

एड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी एवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लेकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
3: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
3: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
3: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
3: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी। एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।

0: बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों? आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे हैं दुश्मन फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत उत्तम सिंह का।

आइए अब सुनते हैं राहत इंदौरी के लिखा गीत फिल्म करीब से। संगीत दिया है अनु मलिक ने और खूबसूरत आवाज़ें कुमार सानू और संजीव ने की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अमीन साबरी और फरी साबरी की आवाज़ में खूबसूरत कव्वाली। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी

0: खिलाड़ी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली

0: पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारे आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय रहेगा खरीफ फसल की बुवाई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे। लेखिका होंगी श्रीमती मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढांडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा पंडित M.S. गोपाल कृष्ण का वायलिन वादन, राग होगा भोपाली। और अब बारी है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे

दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा। सुबह 8:30 पर, 9:02 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राधा कुलकर्णी की आवाज में चंद गजलें। कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा आप सुनेगा सुबह 9:30 पर। प्रस्तुत करता होंगे जितेंद्र स्वरूप राजन। सुबह 10 का समय होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का गीत सागर। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:05 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में दिन में 11 हम प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 12 2:30 पर और रात्रि 10 पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक पंचतंत्र का 8 भाग। दिन में 1 होगा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुनेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 2 शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर। शाम 6 होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसमें बहनें सुनेंगी भेंटवार्ता, पोषण का खजाना, मिलेट्स या श्रेयन, जानकारी देंगी अरुणा सोमकुमार। ये कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति होगा।

रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित उल्हास कवसालकर का ख्याल गायन, राग होगा यमन कल्याण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के बीच शिखर वार्ता। प्रदेश कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी। तबादला नीति 2026 भी पास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के भीमपुर में लॉन्च की अत्याधुनिक गजेल मशीन। 10 मिनट में होगी सिकल सेल की जांच। और कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश भारत इटली नवाचार केन्द्र स्थापित करने और रक्षा साजो सामान के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। जहाजरानी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अर्थव्यवस्था में भी मिलकर काम करने का फैसला हुआ है।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया,
2: आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टिमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने के साथ सेवा की आयु सीमा 62 साल करने और निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापस देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी ऐलान किया।
3: हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई 62 साल। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजेल का शुभारंभ किया। ये मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई जाएगी, जहां सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच महज 10 मिनट में हो सकेगी। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में परिवार की पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ फरार पति समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत आज कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में

चार प्रांतों के 383 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉ. भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया। बैठक में ऑनलाइन गुमनाम समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाएं फैलाने पर गहरी चिंता जताई गई। गुजरात के कच्छ जिले को राजस्थान और दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा इस शुक्रवार से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश में आज हजारों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। हड़ताल को प्रदेश के ज्यादातर रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने समर्थन दिया। भोपाल में केमिस्टों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो सीधे आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने आज खंडवा के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए की लागत से बने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। सीहोर जिले की बुधनी के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए 500 चरखे भेंट किए गए थे। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला बाजार में भी इन्हें खूब सराहा जा चुका है। बुधनी में 29 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। यहाँ 51 शेड में कारीगर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2027 की जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछले वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। आईपीएल का 65वां मैच अब से कुछ देर बाद ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ के दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना होगा। वे 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य प्रगति पर है। गुना में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बीनागंज स्थित फैंसी पटाखा दुकान और गोडाउन का औचक निरीक्षण किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। जबलपुर में भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में 15 मई से 15 जून तक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान और सेमिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनबे बारे हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैया रहो ग्राम सभा लेख हाजिर रहे और विशेष रूप से आप सभी सहमतियाँ हो जरूर एक संगे संगे जो महत्वपूर्ण जानकारी वो भी से दिलवाए। भैया रहो एक जानकारी तो यही है कि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस और आप सभी जानत होइए कि मधुमक्खियों को हमारे जीवन में या हमारे जो खेती बाड़ी में का योगदान है। भैया रहो देखो मधुमक्खियों को योगदान बहुत बड़ो है। अगर मधुमक्खी ये ना हो तो एक तरह से हमारो खेत में अनाज उत्पादन जो है नहीं हो सके और इसके संगे जो हमारी जो सब्जी भाजी हैं वे भी जो है खेतन में पैदा नहीं हो सकते। कैसे कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है एक पौधा से दूसरे पौधा पे, एक लता से दूसरी लता पे, एक फूल से दूसरे फूल पर पहुँचत है और इससे जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया होते है और तभी जो है सब्जी भाजियाँ पैदा होते या फिर अन्य या फसलें पैदा होते हैं। तो इसके लाने मधुमक्खियों को संरक्षण संवर्धन करना बहुत जरूरी है और आज है विश्व मधुमक्खी दिवस और जो दिवस यही याद कराते हैं हमें कि हम मधुमक्खियों को संरक्षण करें, इनको पालन करें और उनके लाने ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि वो जो है हमारे खेत में बनी रहे, हमारे खलिहान में बनी रहे, हमारे घर घर के आसपास बाड़ों में बनी रहे। और फिर देखो एक बात और है, मधुमक्खियों की को एक प्रजाति नहीं होते, कई तरह की होते। अब वह बात अलग है कि अगर आपने कोनो पेड़ा में लगो भाई छत्ता देख लो हैं और बाह में आपने देख लो कि मधुमक्खी उड़ के आई और काट लो बाने नुकसान कर दो, ऐसी बात नहीं है। कई मधुमक्खियों की प्रजातियाँ ऐसी है जो वो बिल्कुल नुकसान नहीं कर सक करत है बल्कि जो है वे फायदा करत है। सो भैया रो हम तो यही कहते हैं कि देखो मधुमक्खियों को आप पालेंगे तो भी जो है आप आपके लाने फायदा है और अगर आप ना पालें तो उन्हें कम से कम संरक्षित जरूर करें ताकि जो है वे मधुमक्खी इकोसिस्टम से जुड़ी रहें, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वह बनाए रखें ताकि जो है हमारी फसलें खूब हो, हमारी सब्जी भाजियाँ खूब सारी हो। और सब्जी भाजियों की जहाँ तक बात करी भैया ने एक बात हमें याद आई है कि हमारे एक कृषि वैज्ञानिक अभी आए थे तो बिन ने जो है एक नई तकनीक बताई और वो तकनीक है हाइड्रोपोनिक। अब जहाँ हाइड्रोपोनिक तकनीक नाम जरूर जो है इको थोड़ा अजीब लग रहा हो आपको, मतलब इको सीधो सीधो अगर परिभाषा देखें तो ऐसी तकनीक जो बिना मिट्टी बिना जमीन की जो है पेड़ पौधे सब्जी भाजी उगा सकते हैं तो जह तकनीक कहलाते हैं हाइड्रोपोनिक। और जह तकनीक के बारे में कई बार जो है हमने विषय विषय को बुला के ऑफरों को जानकारी भी दिलवाई है और हम चाहते हैं कि हम भी जानकारी दें, मनो हाँ थोड़ी जानकारी आप भी रखो। कैसे कि आपके पास में तमाम सूचनाओं की तकनीकें हैं और फिर सबसे बड़ो मोबाइल सहारो है आपके पास तो इनमें आप जो जानकारी चाहो वो उपलब्ध है। फिर भी आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा में टेम टेम पे ऑफरों को नई नई कृषि तकनीकों की जानकारी हमसे ही दिलवाते रहें। तो बिल्कुल हाइड्रोपोनिक जो तकनीक है इसके बारे में भी हम ऑफरों को जरूर जो है जानकारी दिलवाते हैं। मनो हाँ इतना ज़रूर बता दें कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास कोनो ऐसी व्यवस्था नहीं है जी पे आप सब्जी भाजी उगा सको तो फिर जो है हाइड्रोपोनिक तकनीक अपना के ज़रूर जो है आप जो है सब्जियाँ उगा सको। और भैया रहो देखो अब जो है टेम हो रहा है बुंदेली समाचारन को तो सुनते हैं अपने बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: नमस्कार भैया रहो अब प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली के रोम में वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संगे प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करी। इस बातचीत को उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करवो सुई है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ावे पर विशेष जोर दोगो। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा करी। ये बातचीत भारत और इटली के बीच बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं जिसमें आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को विस्तार देवे पर विशेष जोर दोगो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियाँ दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन के लाने 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के

0: जाने 11,608 करोड़ रुपये मंजूर करे गए हैं। ई के संगे तबादला नीति 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। ई नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले करे गए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से हुई हैं, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लाने मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी हुई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजेल को शुभारंभ करो। जब मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई गई है, जाए सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच सिर्फ 10 मिनट में हो सके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के संग एक बैठक करी। इसमें मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी और एआई आधारित समाधानों पर चर्चा भई। कृषि, शिक्षा, वन और महिला एवं बाल विकास विभाग में पहले से ही एआई आधारित काम शुरू हो गया है। सिंहस्थ 2028 में भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं को एआई से और बेहतर बनाने की तैयारी हो रही है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम रोजगार सहायकों को राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित भाव। प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगन को लेके भोपाल में एकजुट भए। ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इन्हें अभी सिर्फ 18,000 रुपये मानदेय मिला थे, जबकि पंचायत सचिवन को 40,000 से 50,000 रुपये मिल रहे हैं। इनकी मांग है कि पंचायत सचिव के वेतन को 90% इन्हें भी मिले और इनकी सेवा नियमित करी जाए। मुख्यमंत्री ने महासम्मेलन में रोजगार सहायकों को मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने की घोषणा की। बिन्ने गई है कि आपराधिक मामलों में निर्दोष साबित होवे पर नौकरी वापस मिलेगी और सेवा की आयु सीमा 62 साल कर दी गई है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज कड़े सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में 4 प्रांतों के 383 स्वयं सेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। ई वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉक्टर भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयं सेवकों को मार्गदर्शन करे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2027 की जनगणना में जाति गणना करावे के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देवे वाली याचिका खारिज कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कही है कि जो मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोर्ट ने जा भी कही है कि पिछले वर्गों के लाने कल्याणकारी योजनाएं बनावे के लाने बिनकी संख्या जानबो बहुत जरूरी है। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने शहर में 9 आदेश जारी कर दो है। इसके तहत मकान मालिकों को किराएदार या पेइंग गेस्ट रखवे के 1 हफ्ते के भीतर थाने या एमपी पुलिस सिटीजन पोर्टल पर जानकारी देनी हुई है। घरेलू नौकर, होटल लाज में ठहरे मेहमान, डिलीवरी बॉय, स्पा, ब्यूटी पार्लर कर्मचारी और निर्माण मजदूरों को विवरण भी पुलिस को देना जरूरी हुई है, जो आदेश 2 महीने तक लागू रही है और उल्लंघन होवे पर कानूनी कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश की हजारों दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपो। बिन्ने आरोप लगाओ कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न हुआ है।
1: बुंदेली समाचार
0: भैया, देखो शुरुआत में हम आपको हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में बात अपन कर रहे थे और वास्तव में यह बड़ी अच्छी तकनीक है। इसमें क्या है कि न ज़मीन की ज़रूरत, न मिट्टी की ज़रूरत, बल्कि जो पानी होते पानी पे ही आप जो है सब्जियां, पेड़ पौधे उगा सको। तो मनो हाँ, जो हल्की सब्जियां हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको आप आसानी से उगा सकते हो। और जिसमें जो है ज़्यादातर जो जैसे जिन्हें अपन भाजी के तौर पे जाना था, भी सब्जियां आसानी से उगाते हैं। इनमें जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है ना, धनिया है, ये ऐसी सब्जियां बहुत आसानी से उग

और फिर हाँ, जो तकनीक है वो आपको थोड़ी सी सीखना जरूरी रहता है। ये कहलाने आप अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग के कोनो जो अधिकारी हैं बिनसे भी आप बातचीत कर सकते हो, और जो अपने ग्राम सहायक है बिनसे आप जानकारी ले सकते हो। फिर जो है कृषि महाविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पर भी जो है ई तकनीक के बारे में जानकारी आपको मिल सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लो, ई के बाद में आप हाइड्रोपोनिक तकनीक से सब्जी भाजी उगा सकते हो। और भैया रहो, चलो क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपन ग्राम सभा में सुनाते हैं जो लोकगीत ममता गोस्वामी के स्वर में है।

0: भैरों जो आपने सुनो देवी गीत ममता गोस्वामी के स्वर में। और अब जो है एक बढ़िया जानकारी हम आप को दिलवा जा रहे हैं। जब भेड़ वार्ता है खरीफ फसल की बुआई पूर्व तैयारी एवं सामूहिक कृषि कार्य, ये विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। इनसे बातचीत कर रही हैं अमृता जैन। अपन सभी मिलकर सुनते हैं जब बातचीत।
1: भाइयों बहनों नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं कि कृषक भाई बहनों की खरीफ की फसल की बुवाई के पूर्व की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, क्योंकि अभी खेत खाली हो चुके हैं और हमारे कृषक भाई जो खाली खेत हैं उनमें कई तरह के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो आने वाली फसलें हैं वो अच्छी हो और वो कीटों से बची रहे, साथ ही साथ वो फसल उन्हें अच्छी आय दे सके। तो खरीफ की फसल की बुवाई पूर्व हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, क्या क्या काम करने हैं, ऐसे ही विषय से संबंधित आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की बुवाई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी, जो कृषि महाविद्यालय के डीन हैं, जो गंज बासोदा से हमारे बीच आए हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। सर स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: जी सर, आज हमने चर्चा ले ली है खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व की तैयारी, और जैसा कि सर अभी अपन जानते भी हैं कि खेत खाली पड़े हुए हैं और कृषक ये चाहता है कि जो अगली बुवाई करे या जो भी अगली फसल को बोए तो वो एक अच्छी उत्पादन दे। तो सर ये बताइए कि खरीफ फसलों की बुवाई के पूर्व कृषकों को क्या क्या कार्य करना चाहिए।
2: वर्तमान समय में रबी की फसल की कटाई हो चुकी है
1: जी,
2: और जिन किसान भाइयों के पास पानी का साधन और फसलों की सुरक्षा का साधन था, उन किसान भाइयों ने मूंग उड़द की खेती मध्य प्रदेश में की हुई है
1: जी,
2: अपने कुछ क्षेत्र में। इसके अलावा खेत खाली है, तो खाली खेत जो किसान भाई के हैं उनको खाली न रखते हुए उनके लिए अभी से कृषि कार्य में करना है उनको, जिससे हमारी आने वाली खरीफ की फसल है वो खरीफ के बाद रबी की फसल हमको जो लेना है उसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हो, जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। तो इसमें सबसे पहले जैसे खेतों की साफ सफाई है और खादों का प्रबंधन है, उर्वरक का प्रबंधन है, बीज की व्यवस्था करना है, उसको गहरी जुताई करना है खेतों की, जिससे कीड़े बीमारी कम आए, उनके खेतों की मेड़ों पर जो अनावश्यक वृक्ष खड़े हैं या आवश्यक वृक्ष हैं उनकी कटाई छटाई करना है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े बीमारियों के परपोषी या उनकी सुप्ता अवस्था इन वृक्षों पर ही पलती है, जो इस मौसम आने पर जो हम खरीफ रबी की फसल लगाते हैं उसमें इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये सारे कार्य है जो हमारे किसान भाइयों को खेती में करना है। ऐसा नहीं कि रबी की फसल आ गई तो हम बिल्कुल शांति से घर बैठे रहें और कोई कार्य नहीं करें, और जब बरसात होगी हम सीधी बुवाई का कार्य
1: कर दें,
2: उसके पहले हमें ये सारे बहुत सारे कार्य जो है करना है जिससे अच्छा उत्पादन हम ले सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत आवश्यक है ना कि हम खेतों में यदि किसी कीटों का प्रकोप है तो उनका हमें निवारण करना है, साथ ही जो हम नई फसलों को बोएंगे तो उनकी बीजों का भी हमें बीजोपचार करना है, और ऐसे कई कार्य यदि कृषक थोड़ा सा पहले कर लेता है तो देखता है कि आने वाली फसलों में उसे एक अच्छा उत्पादन मिलता है।
2: बिल्कुल
1: सर, अभी आपने बात बताई हमें कि हमें कई तरह के कार्य करने हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि फसल कटाई के उपरांत खेतों की साफ सफाई करना क्यों आवश्यक है और क्यों करना चाहिए इसे?
2: ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है कि किसान भाई को फसल की कटाई के बाद खेतों की साफ सफाई करना है, लेकिन मैं उनसे यहाँ विनम्र अपील ये करता हूँ कि हमारी जो रबी में विशेष करके गेहूं की कटाई के बाद जो नरवाई खड़ी है
1: जी,
2: उसमें कदापि वो आग
1: ना
2: लगे, क्योंकि किसान भाई साधारणतः क्या समझता है कि उसमें आग लगा दो हमारे खेत साफ हो गए, उसमें आग बिल्कुल लगाना है, उसका तकनीकी तरह प्रबंधन करना है, चाहे तो उसके बेलर से बंडल बना लो आप उसको, चाहे तो उससे भूसा बना लो, या आप उसको रोटावेटर से खेतों में ला दो। इस तरह हमको खेतों की साफ सफाई करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फसलें होती हैं, बहुत सारे क्षेत्र हमारे यहाँ, कई क्षेत्रों में जैसे अरहर लगाई है किसानों ने, कपास लगाया था, तो कपास की अंतिम तुड़ाई के बाद क्या करते हैं किसान भाई, उसका जो पौधा रहता काफी बड़ा होता
1: जी,
2: उसको खेत में छोड़ देते हैं। उसको खेत में छोड़ने का तरीका ये है कि कुछ दिनों पशु खा लेते हैं, जिससे उसमें कुछ कीड़ों की सुप्ता रहती है, वो पशुओं के द्वारा खा ली जाती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन बाद में उन पौधों को हमको जड़ सहित खेत से निकालने की बहुत आवश्यकता है। आपने सरसों लगाई हुई है, सरसों के डंठल हम क्या कहते हैं, सरसों की कटाई कुछ ऊंचाई से करते हैं तो उसके डंठल रहते हैं, तो उसके डंठलों को खेत से या तो निकाला जाए या रोटावेटर के द्वारा खेतों में अपनी मिट्टी में उसको मिक्स किया जाए। मिक्स करना ज्यादा अच्छा है, यदि हम इसको मिट्टी में मिक्स करते हैं तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसमें हमें कार्बन को बढ़ाना है, पोषक तत्वों को बढ़ाना है। अब साथ ही साथ क्या है, खेत पे जो मेड़े रहती हैं उन मेड़ों को भी हमें अच्छी तरह साफ करना है, क्योंकि मेड़ों पर हमारा कचरा नहीं रहना चाहिए, उसमें आग ही नहीं लगाना है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, पता नहीं कि आपने गए सीधे

0: मेड़ पे आग लगा दी पूरा कच्चा है। इससे नुकसान बहुत होता है क्योंकि मेड़ों खेतों की मेड़ों पर अगर हानिकारक कीड़े हैं तो लाभदायक कीड़े की भी अवस्था वहाँ रहती है, तो जिससे वो जल नहीं जाए। और हमारे जो वृक्ष हैं, वृक्ष सभी लाभदायक, चाहे हमारे लिए फल देते हों और फल नहीं देते हों, फल जो नहीं देते हमारी खेती में काम आते हैं, फिर हमको ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को उनकी कटाई छटाई सदाई अच्छी करना है, जिससे कि पौधों का आकार सही हो और पौधों की अधिकतर छाया हमारी खेतों में नहीं जाए। क्या होता है, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी छाया अधिक खेत में जाती है, जैसे उदाहरण तो बबूल है, तो ये हमारी फसल जो बोई जाती है रबी और खरीफ में उसकी वृद्धि को कम करके उत्पादन को गिरा देता है। तो इस तरह से ये सब कार्य है जो किसान भाइयों को अभी गर्मियों के समय, क्योंकि गर्मियों के समय बहुत काम नहीं है उनके पास, फसल की कटाई हो गई, उन्होंने अपना जो बेचना था उत्पाद मंडी में बेच दिया या बेचने जा रहे हैं, अभी बेच रहा है अभी, और जो रखना था वो उन्होंने स्टोरेज में रख दिया है उसको, तो बिल्कुल साथ में बैठे नहीं और अपना काम निरंतर वो करते रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये सभी बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली है कि हमें नरवाई को नहीं जलाना है, क्योंकि बार बार अपने कृषक भाई बहनों से ये कहते हैं कि नरवाई का जलाना उनके लिए कितना हानिकारक है, और उसी नरवाई को यदि वे मिट्टी में मिला देते हैं कि उनके लिए कितना फायदेमंद है, ये वे समझ सकते हैं। सर, अब बात तो आपने खेतों की साफ सफाई की कर दी, लेकिन यदि हम ये कहें कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, जो सामान्यतः हर कृषक करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर ऐसे कई कीट होते हैं जो आगे आने वाली फसलों में भी लग सकते हैं, तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को करने से कृषकों को और क्या लाभ होंगे, ये सर बताएं।
0: ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अभी खेतों में हमारा क्षेत्र में देखने को आ रहा है कि हमारे किसान भाई कर रहे हैं
1: जी,
0: जो हमारा रिवर्सिबल मोल्ड वोल्ड प्लाउ आता है उसके द्वारा हमारे किसान भाई गहरी खेतों की जुताई कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से जो हो रहा है, जिसे बहुत सारे किसान भाइयों ने क्या नरवाई को जलाया और न उन्होंने उसका भूसा बनाया, हमने प्रत्यक्ष देखा है, वो मोल्ड वोल्ड प्लाउ जो रिवर्सिबल है उसके द्वारा गहरी जुताई करके उस नरवाई को मिट्टी में पलट दे रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अब बहुत अच्छी बात है।
0: ये अच्छी बात इसलिए है कि जैसे ही पहले प्री मानसून सावर्स आएंगे, जब मानसून आता है उसके एक दो हफ्ते पहले क्या होता है,
1: प्री मानसून
0: आता है, तो कई बार बहुत पानी बरस जाता है, तो जब वो पानी बरस जाएगा तो खेतों में बढ़िया मिट्टी डेले उसके सोख लेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, किसान भाइयों को गहरी जुताई करना चाहिए। दूसरा, गहरी जुताई करने से क्या होता है कि बहुत से कीड़े और बीमारियां हैं उनकी सुप्त अवस्था, जो अभी बिल्कुल आप समझेंगे निर्जीव है, उस अवस्था में भूमि के अंदर पड़े हुए हैं, क्यों, उनके लिए अभी कोई भोजन नहीं है और अनुकूल वातावरण
1: नहीं है,
0: तो मिट्टी के अंदर पड़े हैं। तो जैसे ही हम गहरी जुताई करते हैं, तो आपने भी देखा होगा जब खेतों के अंदर जुताई होती है तो बहुत सारे पक्षी पीछे ट्रैक्टर के चलते हैं,
1: जी जी,
0: वो इसलिए चलते हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए दिख जाए और वो उसको खा लेते हैं
1: जी।
0: तो एक तो वो प्राकृतिक तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको खा लेंगे। दूसरा क्या है, जब अभी देख रहे हो आप तापक्रम 40 और 45 के बीच चल रहा है
1: जी।
0: इतने तापक्रम के कारण जो कीटों और बीमारियों की सुप्तावस्था है वो सूर्य की तेज रोशनी के कारण वो स्वतः नष्ट हो जाती है। मिट्टी का कटाव कम रुकता है, जिन खेतों की हमने जुताई कर दी है अब पानी बरसेगा, उनसे पानी बहुत तेजी से खेत से बाहर नहीं जाएगा। एक जो बिना जुती जमीन है, जो एकदम खाली पड़ी है, उसमें कुछ नहीं है, जब उस पर पानी पड़ेगा तो तेजी से पानी खेत से बाहर
1: निकल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: जब खेत से बाहर पानी जाएगा तो अपने साथ क्या, मिट्टी तो ले जाएगा ही, हमारे पोषक तत्व भी ले जाएगा। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को 3-4 वर्ष बाद में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई
1: करनी चाहिए
0: आवश्यकता में।
1: अब सर एक और बात है कि हम कहते हैं कि जैविक खादों का उपयोग करें या खादों का उपयोग करें, लेकिन ज़्यादातर जो जैविक खादें हैं वे लंबे समय तक उन्हें ज़्यादा फायदा देती हैं, तो यदि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या अन्य ऐसी खादें हैं जिनका कृषकों को खेत में उपयोग करना है, तो वे खेतों में कब डालें इसे, मतलब अभी जो गहरी जुताई करें उस समय डाल दें या फसल की बीज की बुवाई के बाद डालें या फसलों के कुछ उगने के कुछ दिनों बाद, इस विषय में बताएं।
0: अभी ये देखने में आ रहा है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, विशेष करके गांव में जो घूरे होते हैं उससे जो खाद उनकी अपरपक है, क्योंकि उसको अच्छी तरह वो सड़ाते नहीं हैं, तो गर्मियों में खेत खाली रहते हैं तो वो ले जाके खेतों में डाल देते हैं, जबकि ये डालने का बिल्कुल सही समय नहीं है। यदि आप खेत खाली हैं और इतनी तेज धूप पड़ रही है, तापक्रम बहुत उच्च अवस्था पर है, और उस समय यदि आप खेत में कोई भी रासायनिक खाद या देसी खाद या जैविक खाद डालते हैं, तो सारे पोषक तत्व तो तेज धूप के कारण सब बाष्पीकृत हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये मेरा किसान भाइयों से इस आकाशवाणी के माध्यम से कहने का ये निवेदन है कि गर्मियों में वो खाद को खेतों में देसी खाद जी बिल्कुल नहीं डालें। यदि खेत में तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, बरसात में कीचड़ हो जाती है या बाद में ले जा नहीं पाते साहब, तो उसको अभी ले जाके पेड़ की छाया में, वृक्ष की छाया में रख लें। अच्छा। लेकिन उसको खेत में
1: नहीं डालें, तेज धूप में नहीं डालें,
0: नहीं तो क्या होगा।

0: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं सब तेजी से उड़ जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट तो किसान नहीं डालते इस टाइम पर, लेकिन खरीफ में गर्मियों के दिनों में किसान भाई देसी खाद डाल देते हैं। बहुत सालों पहले हमने किसानों को यह देखा कि किसान भाई अभी गर्मियों में सुपर फास्फेट डाल देते, तो हमने उनको रोका कि अभी डालने की कोई होता है, खेतों में खाद तभी डालना चाहिए चाहे रासायनिक हो चाहे जैविक देशी हो, जब खेत के अंदर नमी हो और तापक्रम कम हो। यदि नमी नहीं है या भूमि में मॉइस्चर नहीं है, आप कोई खाद डाल रहे हैं तो पौधों को उपलब्ध नहीं होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय हमने सोचा है जो वो करना चाहिए किसान भाइयों को कि खरीफ की फसल की कटाई कर लो, आप एक बार खेत की जुताई कर लो, उसके बाद ले जाए खेत में डालो, फिर फैलाने के बाद फिर से एक बार जुताई कर दो तो वो अच्छी तरह से मिल जाती है। फिर आप फसल की बुआई करेंगे रबी की, तो रबी की फसल की बुआई के बोने के 25-30 दिन बाद वो पौधों को बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध होने लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और इस बात का हमारे कृषक भाई बहन विशेष ध्यान दें। सर अब चूंकि चर्चा हमने खादों की कर ली, अब ये बताइए कि उर्वरक एवं बीजों का प्रबंधन कृषक कैसे करे?
0: देखो क्या है, अभी किसान भाई मैंने बार बार कह रहा हूँ कि किसान अभी तैयारी, जो अच्छे किसान हैं जागरूक हैं वो अभी से अपनी योजना बना रहे हैं कि हमको कौन से खेत में कौन सी फसल
1: बोनी है
0: और उनको खेत की उर्वरता ही मालूम है कि इस खेत की उर्वरता कितनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाई अपने खेतों के हिसाब से फसलों का चयन करें। अभी मौसम का पूर्वानुमान अभी सटीक नहीं आया है
1: जी,
0: मई के अंत तक अपना मौसम का पूर्वानुमान सटीक आ जाएगा कि इस बार कितनी बारिश होने वाली है
1: जी।
0: तो बारिश के हिसाब से अपनी फसलों का चयन करें और खरीफ के मौसम में कोई एक फसल नहीं बोए कि मैंने पूरा सोयाबीन बो दिया है साहब, मैंने पूरी धान लगा दी है, मैंने मक्का लगा दी साहब, या मूंग उड़द लगा दिया है, या ज्वार लगा दी, या बाजरा लगा दिया, या तिल लगा दी। मैं इतनी फसलों को जो किसान भाइयों को जो खरीफ बता रहा हूँ, इन सभी फसलों को अपने खेत की भूमि के हिसाब से वो चयन करे और सभी फसलों को लगाए, किसी एक फसल को नहीं लगाए,
1: अलग अलग फसल
0: लगाए। अब वो धान भी लगाए, ज्वार भी लगाए, ज्वार लगा सकता तो बाजरा लगाए, मक्का भी लगाए, उड़द भी लगाए, मूंग भी लगाए, तिल भी लगाए, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े क्षेत्र में सारी फसलों को। फसल के विविधीकरण का सबसे बड़ा फायदा जब होता है जब मौसम हमारे प्रतिकूल चला जाता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं, मौसम भी खराब हो गया, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी आ गया, ऐसा नहीं होगा कि सारी फसलें आपकी नष्ट हो जाएंगी।
1: अच्छा, मतलब एक यदि बोते हैं तो अगर मान लीजिए किसी एक कीट का ऐसा प्रकोप आता जो सारी फसल को नष्ट करेगा,
0: सबको नहीं,
1: लेकिन अलग अलग लगाएंगे तो फिर वो उतना नष्ट। ये तो सर बहुत अच्छी बात है।
0: और दूसरी बात ये है कि जैसे आप ज्यादा एरिया में फसल लगा रहे हैं तो एक किस्म को नहीं लगाना है, अलग अलग किस्मों को आप लगाइए। ये भी एक वैज्ञानिक सलाह है किसान भाइयों, क्योंकि एक ही किस्म में कई बार क्या होता है समस्या आती है। तो आपने चार किस्म लगाई है तो एक किस्म समस्या आएगी, तो तीन किस्मों का
1: बचाव
0: अच्छा मिलेगा। तो ये तो वही फसलों की बात। अब बीज की बात, किसान भाई आपस में बहुत चर्चा करते रहते हैं फसलों, उन्हें पता आजकल के है जो मोबाइल आ गया है उससे बहुत उन्हें बहुत जानकारी है उनके पास कि कौन सी किस्म हमको अच्छी है, किस फसल की किस वैरायटी को हमें लगाना
1: जी।
0: उस वैरायटी के बीज की व्यवस्था वो अभी से करें, एडवांस में अपना अग्रिम बुकिंग कर ले और उस हिसाब से अपना बीज का उठाव कर ले। बीज को घर लाने के बाद सबसे पहले जहाँ से बीज ले रहे हैं बीज को क्या करे, वो उठाव कर रहा है बीज का बिल जरूर लाए, बीज खरीद रहा है और उस बिल में कुछ चीजें देखने की जरूरत है कि एक तो उसका अंकुरण प्रतिशत कितना देर लग के दे रहा है वो
1: जी।
0: उसकी भौतिक शुद्धता कितनी है, उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, दूसरी फसलों के बीज उसके अंदर कितने मिले हुए हैं, तो ये सब चीजें उसको उसमें लिख के दी जाती है। जैसे हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से जब भी कोई बीज विक्रय करते हैं हम, तो ये सब चीजें उसमें लिख के दी जाती हैं। तो इस तरह से वो सब लिख के बीज ले, बीज लेने के बाद जब घर बीज ले आता है तो वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं रखे और ना ही वो जो बिल दिया है कि साहब उसने कहा है कि साहब ये 90% अंकुरण होता है। आप पुनः अपने घर पे आके सारी फसलों के सभी किस्मों के बीजों का अंकुरण का परीक्षण अवश्य करें। अंकुरण परीक्षण करने से हमें ये पता लग जाएगा कि हम जो बीज लाए हैं उसका कितने प्रतिशत अंकुरण होने वाला है। अगर और उसकी रिकॉर्डिंग कर ले जिससे उसे डाउट नहीं रहेगा कि मान लीजिए बाद में कम हुआ तो वो कह नहीं साहब ये तो आपने गलत किया है, ये किया था, तो हमने रिकॉर्डिंग रखा पूरी उसके पास और फिर अपन ने जहाँ से ले आया उसे दिखाया। लेकिन अंकुरण परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक
1: है। कई बार ये होता है कि कृषक बाजार से ले आए और उन्होंने जो पर्चे में जो लिखा है कि भैया इसका इतना प्रतिशत ही अंकुरण होना है उसी पे वे बिल्कुल से विश्वास कर लेते हैं और फिर जब बुवाई करते हैं तो हैं कि अरे हमारा अंकुरण इतने अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या कहीं हमारे खेतों की उर्वरकता में कमी है या हमने जो खाद डाली है उसकी कमी है, वे इस विषय में विचार करते हैं। तो सर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण हमारे कृषकों को जानकारी दी है। चर्चा हमारी इतनी हो गई।

0: सर, लेकिन ये बताइए कि वर्तमान समय में कृषक भाइयों को आप और क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे भी कौन से कार्य करें जो उन्हें आने वाली फसल में लाभदायी साबित हो।
1: तो किसान भाई, चूंकि अपन बात कर रहे हैं खरीफ की, तो खरीफ में सबकी बात हो गई, लेकिन बीज की अंकुरण की बात के बाद बीज की बात आती है उपचार की। बीज का उपचार अत्यंत आवश्यक है। बीज के अंकुरण के बाद जब हम बीज की बुआई करने जाते हैं, उसके पूर्व हमारे किसान भाइयों को ये विशेष सलाह है कि किसी भी फसल को बिना बीज उपचार के बुआई नहीं करें। उसमें उसको फफूंदनाशक, कीटनाशक और जैव उर्वरक तीनों से बीज उपचार करना है। फफूंदनाशक के लिए सबसे अच्छा ट्राइकोडर्मा है। यदि ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है तो वो रासायनिक फफूंदनाशक भी उपयोग कर सकते। कीटनाशक इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि आजकल बहुत सारे कीड़े हैं जो हम बीज उपचार से नियंत्रित कर लेते हैं, जैसे कि सोयाबीन में तना मक्खी, सोयाबीन में सफेद मक्खी है, मूंग उड़द में सफेद मक्खी है, ज्वार बाजरा मक्का में प्रहर मक्खी है। ये कीड़े हम किससे नियंत्रित कर लेते हैं? बीज उपचार करने से। तीसरा, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक मतलब ऐसे जीवाणु हैं, इनसे यदि हम बीज उपचार करते हैं तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जमीन में ले आते हैं, तो दलहनी फसलों को हमें राइजोबियम से, जो गैर दलहनी फसलें उनको एजेटोबैक्टर से बीज उपचार करने की बहुत आवश्यकता। तीसरा एक इसमें जैव उर्वरक है पीएसवी। किसान भाई जानते हैं पीएसवी का उपयोग इसलिए करना है कि हमारी भूमि में जो फास्फोरस हमने जो डाला था वो मिट्टी ने पकड़ के रख लिया है। उस मिट्टी ने जो पकड़े हुए फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराना है मिट्टी से बाहर निकाल के, तो इसलिए हमको पीएसवी से बीज उपचार करना है। तो 5 ग्राम राइजोबियम या एजेटोबैक्टर और 5 ग्राम पीएसवी से 1 किलो बीज को उपचार करने की बहुत आवश्यक। इससे उपचार करने के लिए थोड़ा गुड़ का घोल बनाएं, मतलब अपन जो शरबत कहते हैं इसको, उसको छिड़कें उसके ऊपर, फिर जैव उर्वरक डालें जिससे अच्छी तरह छिप जाते हैं। उपचार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक, फिर कल्चर से बीजोपचार करें। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि खेत की मेड़ के जहाँ करना चाहिए उपचार करके लाओ, थोड़ा उसको वहाँ फैला दो तो उसको सूख जाए, फिर आप सीड ड्रिल से उसकी बुवाई करो।
0: सर, आज आप कार्यक्रम में आए हैं और आपने हमारे कृषक भाई बहनों को खरीफ फसलों की बुवाई के पूर्व की जो भी कार्य हैं उस विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार किसान भाइयों।
2: तो भैयों, आपने जब बातचीत सुनी खरीफ फसल की बुवाई, पूर्व तैयारी एवं सामी कृषि कार्य, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग और इनसे बातचीत कर रही थी अमृता जैन। और भैयारों, अब फिर अपन लोकगीत की तरफ चलते हैं और एक बढ़िया चौकड़िया हम आपरों को सुनवावे जा रहे हैं, जी है हर गोविंद सिंह कुशवाहा और बिन के साथी, जिनसे अपन सुना थे जो चौकड़िया।

तन के तनक भरोसे नैया, जाहती चेतावनी लोकगीत और जय गा रहे थे गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल और बिन के साथ ही। भैया देखो अब जो है मौसम की बात करें तो गर्मी पूरे सबाब पे है। बस अपने जो सब्जियों की जो नर्सरी आपने तैयार की है तो उनको ध्यान रखें, उनको अच्छे से ढक के रखें, या तो गीली टाट करके जो है वहाँ पानी से गीली करके बाहर ढक के जरूर रखें, कैसे कि गर्मी बहुत तेज है ना। और अब जो है टेम हो रहा है चलवे को, तो सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला।

0: है, यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा? और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
2: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में

0: पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
2: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था
1: जी।
2: और उसके साथ साथ भारत और इटली के संबंध काफ़ी नीचे चले गए थे। भारत इटली में इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थी एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा
1: जी।
2: और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए, तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए थे, और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
1: अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई, और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में $16.77 बिलियन तक का व्यापार हुआ था, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है, व्यापार है, उसको $23.2 बिलियन यानी के लगभग €20 बिलियन से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के €20 बिलियन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
1: अम्बेसडर वाधवा, अभी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
2: देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में, और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक

0: अहम उसका स्तंभ रहेंगे। और उसके चलते दोनों देशों ने काफ़ी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ हैं। इसी के चलते जो 800 और जो जो कंपनियां इटली की भारत में अब आजकल सक्रिय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी सालों से हो रही है। किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफ़ी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 5-6 ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें और उसके
1: जी
0: साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय 2029,
1: जी
0: मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
1: जी अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की डिज़ाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
2: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
1: अम्बेसडर बाधवा, अभी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: तो हमने जैसा देखा है कि जैसे कि आपने कहा भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा
1: जी
0: है और उसके चलते काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जैसे कि पीएलआई स्कीम है जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी के 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं
1: जी
0: उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिज़ाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज
1: जी
0: हैं भारत में जो मोबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी,
1: जी
0: इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है,
1: जी

0: और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो टैलेंट है भारत का, वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है, तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
0: हाँ बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली आईएमएफ के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है। बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज, और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं
1: जी
0: इस कनेक्टिविटी के थ्रू, उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं। और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएक का, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और जो पोर्ट्स हैं
1: जी
0: दोनों एंड्स पर, भारत में और इटली में, उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी
0: तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएक के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएक के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएक सक्सीड करे, ताकि ये इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि
1: जी
0: इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि BRI जो जो है वो ओपेक है और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं चाहेगा कि उसकी उसको रेप्लिकेट किया जाए
1: जी
0: इस कॉरिडोर में।
1: अम्बेसडर अनिल वाधवा, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने आपने वक्तव्य और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, सुर्खियों के आज के अंक को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपके रेडियो सेट पर आ रहा है नया दौर फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में साहिर के बोल हैं और संगीत ओपी नैयर का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत। हसरत जयपुरी का गीत है, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और खूबसूरत आवाज़ लता मंगेशकर की।

आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का गीत। शब्द हैं SH बिहारी के और तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिद्धि से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है SG परमन ने।

फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म की खूबसूरत गज़ल तलत अजीज़ की आवाज़ में। शायर हैं शहरयार और तर्ज बनाई है ख़याम ने।

0: हमारे श्रोताओं के लिए सूचना, भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय संगठन, राजनीतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास और शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस और यातायात की समुचित व्यवस्था होना जरूरी हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति की क्षति न पहुँचाना, यानी कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना जरूरी है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। संजय कुमार, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन आदेशों को जारी किया गया है। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास, शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त और सूचना सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना जरूरी होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजन कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षतियों की जिम्मेदारी भी आयोजकों को होंगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जा सकेगा जिसमें शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव और समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न होगी। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास और शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग या रखरखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत

0: परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes,

0: money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.

0: in Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45 degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तावुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसूत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खौज किया है।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा

0: और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगु मीशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंगयू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग

0: इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी।

अक़वामे मुत्तहिदे के इक़्तिसादी जायज़ा और पॉलिसी डिवीज़न के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावक़ार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक

0: मजबूत आधार दिया।
1: कहानी यहीं नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाड और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है।

0: कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
2: डॉक्टर अंक

0: Roma had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा था।
0: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए और

0: जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए, तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद इसमें और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है।

0: और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने

0: सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक क्या ऐसा होगा। लेखक हैं श्रीमती मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढांडियाल।

0: क्या सो गई पुष्पा?
1: नहीं, नींद नहीं आ रही।
0: क्या इस बरसात और तूफानी अंधड़ के कारण?
1: नहीं, ये बरसात तो तन मन को शीतल करती है।
0: फिर?
1: मुझे मेरी पिछली जिंदगी में आया तूफान बेचैन किए रहता है।
0: पुष्पा, मैं सब जानता हूँ, तुम क्यों बेकार में परेशान होती रहती हो?
1: मुझे न जाने क्यों हमेशा डर सा लगा रहता है।
0: डर? डर किस बात का?
1: यही, मेरी जिंदगी के काले सफ़े जो आज तुम्हारी वजह से सुनहरे हो गए हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे?
0: पुष्पा, जब तक पीयूष की सांसों में तुम्हारे प्रेम की ज्योत चल रही है, तुम्हारी जिंदगी के सफ़ों पर हीरे चढ़ते ही चले जाएंगे।
1: मत करो इतनी प्रेम भरी बातें, कहीं मेरी सांस ना रुक जाए।
0: पुष्पा, तुम्हारी सांसों से ही मेरा दिल धड़क रहा है, इसीलिए तुम्हारी सांसों को रुकने नहीं दूंगा।
1: क्यों, क्या कोई डॉक्टरी फार्मूला इस्तेमाल करोगे?
0: डॉक्टरी फार्मूला तो तुम्हारा पीयूष मरीजों पर इस्तेमाल करता है, परंतु तुमको देखता हूँ तो खुद मरीज बन जाता हूँ।
1: पीयूष।
0: हाँ।
1: वादा करो।
0: क्या?
1: तुम कभी मुझे दुख नहीं दोगे।
0: पुष्पा।
1: कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे।
0: पुष्पा।
1: कभी जलती लकड़ी से मेरी पीठ पर निशान नहीं बनाओगे।
0: पुष्पा।
1: देखो, देखो मेरी पीठ।
0: ओह, बस करो पुष्पा, बस करो। क्या वो इतना हैवान था?
1: हैवान? हैवान भी नाम कम है उसके लिए। वो और उसका

0: अरे पुष्पा की माँ, पुष्पा की माँ, अरे भाई कहाँ हो तुम?
1: क्या बात है, घर में मेहमान आ चुके हैं और तुम पुष्पा की माँ की रट अभी भी लगाए हो।
0: अरे भाई अब तो हमारी आखिरी जिम्मेदारी भी खत्म हो रही है और ये सब तुम्हारे सहारे ही हुआ है।
1: मैं तो तुम्हारी परछाई जैसी रही, करने वाले तो तुम थे, मैं तो

0: छोटी बहनों का तुमने ही तो कन्यादान किया था।
1: आप भी कैसी बातें करते हैं, क्या बड़ा भाई बाप जैसा नहीं होता? फिर बड़ी भाभी माँ हुई कि नहीं?
0: हाँ, सच में हम लोग राधा और पार्वती के माँ बाप बन गए थे, तभी तो उनका कन्यादान हमने अपनी बेटियों की ही तरह किया।
1: हाँ, और आज असल में हमें अपनी बेटी को विदा करना है।
0: बीस साल तक हमारे घर में रहने वाली पुष्पा अब पराई हो जाएगी।
1: लड़कियां तो होती ही पराया धन है।
0: हाँ सावित्री, माँ बाप एक पौधा लगाते हैं, परवरिश करते हैं, और एक दिन वही पौधा उन्हें रुलाकर दूसरे घर में खुशबू बिखेरने चला जाता है।
1: यही तो नियति है और सामाजिक दायित्व भी।
0: लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने पुष्पा में वो सभी गुण विकसित किए हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए।
1: भगवान करे उसकी ससुराल के सभी लोग उसके गुणों की सराहना करने वाले हों।
2: भैया, भैया।
0: क्यों राधा, क्या बात है?
2: भैया, पुष्पा आप लोगों के बारे में बहुत चिंता कर रही है।
0: पागल हो तू, समझाना उसे। भाई, जितना दाना पानी उसका इस घर में लिखा था उसका पूरा होने का समय आ गया।
2: भैया, आप अकेले रह जाएंगे, यही सोच कर वो बार बार परेशान हो जाती है।
0: सुनती हो पुष्पा की माँ, है ना पगली वो है? अरे कहाँ रह जाएंगे अकेले हम, अब तो परिवार और बढ़ जाएगा, दामाद बाबू जैसा बेटा भी तो अपने परिवार में शामिल हो जाएगा।
1: और दामाद जी, उनके माँ बाप, उनकी बेटी, ये सब भी तो परिवार के सदस्य जैसे हो जाएंगे। बीबी जी, जैसे आप गई तो किशन जीजा जी हमारे घर के सदस्य हो गए कि नहीं?
2: हाँ भाभी।
1: बीबी जी, हमारे पास और कुछ तो है नहीं, सिर्फ प्यार है, और इसी प्यार से हम सबको बांधने की कोशिश करते हैं।
2: भले ही ये धागे कच्चे हो, लेकिन इनकी जकड़न फौलादी है।
3: भाई साहब, सारा इंतजाम देख लिया, कहीं कोई कमी नहीं है।
0: अरे जब शिवानंद और किशन जी जैसे कंवर साहब व्यवस्था देख रहे हो तो भाई कोई काम अधूरा रह ही नहीं सकता।
2: माँ,
1: बेटी, आप ससुराल को ही अपना घर समझ रहे हो।
2: मम्मी, पापा, अब आपकी देखभाल कौन करेगा?
0: रहेंगे बेटी, तू सुखी रहना,
1: सदा ससुराल का मान रखना बेटी। हाँ,
2: हाँ, अब तो सास ससुर ही तेरे माँ बाप है।
3: हमारे घर में तो तू मेहमान थी बेटी।
2: बुआ जी, फूफा जी, आप सभी से शहर में हैं। मैं अपने मम्मी पापा को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ।
4: चिंता मत कर बेटी, तू निश्चिंत होकर जा।
5: क्यों पुष्पा, कितना रो रही थी विदाई पर? हाँ, माँ बाप से बिछड़े कितने दिन हुए अभी?
6: जी 15 दिन हुए हैं।
5: ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। अरे कैसी बेटी हो, अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती? हाँ
6: जी, मैं तो मिलना चाहती हूँ, कब ले चलेंगे?
5: ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। हम लोग जब घूमने चलेंगे, लौटते हुए तुझे तेरे माँ बाप से भी मिलवा देंगे।
6: जी ये तो बहुत अच्छा प्लान है।
5: केवल जी कहो, क्योंकि ज्यादा बातें रमेश को अच्छी नहीं लगती। और सुन
6: जी,
5: फ्रिज से बर्फ और सोडा दे जाना। पिताजी, पुष्पा तो मेरे घर आते ही मेरे पापा मेरी मम्मी कहकर रोती रहती है। अरे ना मेरे माँ बाप का ख्याल करती है, ना मेरी इकलौती बहन का।
0: ये क्या कह रहे हैं जमाई बाबू, लेकिन जब आप उसे यहाँ लाएंगे हम उसे और समझाएंगे, अब तो वो आपकी अमानत है।
5: जी अमानत को तो और भी संभाल कर रखना होता है ताकि उसे सही हालत में लौटा सके।
1: जमाई बाबू, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं?
5: ये बहकी बातें नहीं है, ये हकीकत है भाई। मम्मी जी, ये आप लोगों को भूल नहीं पा रही है, इसलिए हम लोगों से जुड़ी नहीं अभी तक।
0: ये कैसे हो सकता है,

0: लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसे संस्कार तो हमने उसे दिए नहीं।
1: मम्मी जी, इसीलिए मैं उसे पहाड़ों पर ले जाना चाह रहा हूं, ताकि 15 दिन वो मेरे साथ रहे और मेरे बारे में जाने, भाई मुझे भी समझे।
2: ये तो जमाई बाबू बहुत अच्छी बात होगी। हाँ? कब जा रहे हैं?
1: वो क्या है कि मैं तो अभी चल दूं, लेकिन एक समस्या है।
0: वो क्या जमाई बाबू?
1: पिताजी, आपने शादी में नगद 1 पैसा भी नहीं दिया, इसलिए ये अड़चन आ रही है।
0: देखिए जमाई बाबू, इस बारे में आपके पिताजी से शादी के पहले पूरी बात हो गई थी, हमने अपनी हैसियत भी उन्हें बता दी थी और ये भी बता दिया था कि हम कैसी शादी कर सकेंगे। इन सब बातों पर वो सहमत भी थे, फिर भी हमने अपनी हैसियत से ज्यादा ही खर्च किया।
1: लेकिन हमारी हैसियत आपने नहीं रखी।
2: जमाई बाबू, पिछली बातें पीछे छूट गईं, अब आप समस्या बताइए।
1: मम्मी जी, वो क्या है कि समस्या है तो बस 10,000 रुपए की।
0: 10,000?
2: 10,000?
1: हाँ पिताजी, इतने में हम घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। और देखिए क्या है कि 5,000 मेरे पास हैं, कुल 15,000 घूमने फिरने में तो काफी होंगे ना। और फिर अभी ही मौका है, पता नहीं गृहस्थी में रमने के बाद मौका मिले या ना मिले।
0: ठीक है जमाई बाबू, कल शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। खाने का समय हो रहा है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगवाता हूँ।
1: खाना? अच्छा, वो क्या है कि मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिए।
0: ठीक है।

0: क्या सो गए?
1: नहीं सावित्री, नींद नहीं आ रही है। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
0: रह रहकर मुझे पुष्पा का ख्याल आ रहा है।
1: भगवान उसे खुश रखे।
0: 10,000 कहाँ से लाओगे?
1: दामाद ने पहली बार मुंह खोला है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। GPF से निकाल लूंगा।
0: अभी तो निकाले थे शादी में, बार बार क्या GPF से निकाल सकते हैं?
1: निकाल तो नहीं सकते शायद, ऑफिस में पूछूंगा।
0: जमाई बाबू की बातों से मुझे डर लग रहा है।
1: लड़का अच्छा नहीं है, जानती हो। खाना अपने कमरे में क्यों मंगाया?
0: क्यों?
1: वो शराब पी रहा था।
0: हे प्रभु, मेरी पुष्पा की रक्षा कर।
2: भाई साहब, क्या रमेश बाबू आए थे?
1: हाँ आए थे कंवर साहब।
2: क्या कह रहे थे?
1: ज्यादा तो नहीं कहा, परंतु आने वाले तूफान का संकेत जरूर दे गए।
2: तूफान? मैं कुछ समझा नहीं।
1: हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
2: क्या ससुराल अच्छी नहीं है?
1: ससुराल का तो पता नहीं, पर जमाई बाबू मुझे ठीक नहीं लगे।
2: भाई साहब आप चिंता ना करें, वकील हूं मैं, वकील सभी को जेल करवा दूंगा।
1: भगवान करे उसकी नौबत ना आए। कंवर साहब, अब आप जब कभी मुकदमे के सिलसिले में जबलपुर जाएं, तो पार्वती को भी लेते जाइएगा, और हाँ पुष्पा से जरूर मिलकर आइएगा।
2: ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें।

0: पुष्पा, ओ पुष्पा।
1: क्या बात है जी?
0: ज्यादा बातें रमेश को पसंद नहीं, सिर्फ अदब से जी बोला करो।
1: जी।
0: देखो, मेरा टाइपिंग का स्कूल यूं तो ठीक चल रहा है, पर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और एक फोटोकॉपी मशीन आ जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएं।
1: इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जी?
0: अरे तू अपने पिता से कह दे।
1: मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं होंगे जी।
0: पैसे नहीं होंगे? अरे पैसे नहीं थे तो लड़की क्यों पैदा की?
1: आप मेरे देवता स्वरूप पापा के लिए अपशब्द ना कहें जी।
0: क्या ये अपशब्द है? तेरी ये मजाल कि मेरे सामने मुंह खोले हैं?
2: क्या बात है रमेश बेटा?
0: पापा, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन खरीदनी है, उसके लिए ये अपने पापा से पैसे ले आए।
2: बहू, रमेश ठीक कह रहा है।
1: लेकिन पिताजी, मेरे माँ बाप

0: का मध्यम वर्गीय परिवार है, उस पर उन्होंने दो दो बुआओं की शादी भी की है।
1: ये सब जिम्मेदारियां तो सभी निभाते हैं।
0: मैंने शादी के समय पापा के लोन के कागज, पे स्लिप, GPF सभी कागज देके, उनके पास कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो वो है सिर्फ कर्जे का बोझ। पता नहीं घूमने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए कहाँ से ला कर दिए होंगे।
2: पुष्पा, तू पापा से जुबान लड़ा रही है?
0: मैं जुबान नहीं लड़ा रही जी, नम्रता से अपने पापा का पक्ष ले रही हूँ।
2: बदतमीज तेरी।
1: क्या कर रहा है रमेश? बहू पर हाथ उठाता है? अरे चले यहाँ से।
3: मुझे नहीं लगता बेटा इसके बाप से अब कुछ मिल सकेगा, इसलिए मार पीट कर इसे खत्म कर दे ताकि हम तेरी दूसरी शादी कर सकें।
2: ठीक है।
4: हेलो, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ, आप कौन?
1: समधी जी, मैं सूरज भान बोल रहा हूँ, रमेश का पिता।
4: प्रणाम समधी जी। कहिए पुष्पा और रमेश जी कैसे हैं?
1: एक बुरी खबर दे रहा हूँ आपको।
4: बुरी खबर? जल्दी कहिए क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
1: वो आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है।
4: क्या हुआ मेरी बेटी को, जल्दी बताइए।
1: उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, आप आकर खुद ही देख लीजिएगा।
4: मैं रात की गाड़ी पकड़कर सुबह तक पहुँच जाऊँगा। हेलो शिवानंद जी।
5: हाँ बोलो। नमस्कार भाई साहब।
4: जल्दी तैयार हो जाइए, जबलपुर जाना है।
5: क्यों, क्या बात है भाई साहब?
4: पुष्पा हॉस्पिटल में है, अभी अभी रमेश के पिताजी का फोन आया था।
6: क्या हुआ?
4: अरे तुम जल्दी तैयार हो जाओ पुष्पा की माँ, पता नहीं पुष्पा कैसी है।
5: भाई साहब मैं पार्वती को भी लेकर आ रहा हूँ साथ में।
4: ठीक है। हेलो कौन, राधा?
7: हाँ भाई साहब नमस्कार।
4: नमस्कार, किशन कहाँ है?
7: क्यों, क्या बात है?
4: अभी जबलपुर चलना है, पुष्पा अस्पताल में है।
7: अरे पुष्पा की शादी को तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं।
4: वो बात नहीं है राधा, कुछ और है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
7: भाई साहब आप चिंता न करें, मैं और किशन तुरंत आ रहे हैं।
5: भाई साहब आप नर्वस ना हो, हम सब हैं ना।
8: मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी।
0: भाभी भगवान सबकी सुनता है, वो इतना निर्दयी नहीं होगा।
5: इन सभी को जेल भिजवा कर रहूंगा भाई साहब।
4: बेटी हम आ गए, कोई चिंता मत करना।
8: पापा, हे भगवान, बेटी तेरी ये हालत कैसे हुई?
4: इतनी कमजोर कैसे हो गई तू?
8: पुष्पा बता, सब बता तू, तेरे साथ क्या हुआ बता।
0: बुआ,
5: एक एक को जेल भिजवा कर रहूंगा, तू पूरी बात बता पुष्पा।
4: बेटी ससुराल का कोई भी नहीं है तेरे पास?
0: नहीं पापा, मैं तो उन लोगों को बोझ लगने लगी थी ना।
8: लेकिन बात क्या हुई बेटी जिसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई?
0: माँ, वो बार बार इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन खरीदने के लिए आपसे पैसे लाने को कहते थे। मुझे आपकी स्थिति पता थी इसलिए इनकार कर देती थी। इस पर पहली बार मुझे ससुर के सामने मारा।
8: मेरी बच्ची।
0: फिर तो बात बात पर ताने, गाली गलौच और मारना पीटना आम बात हो गई। परसों तो हद हो गई, रमेश ने फिर पैसे लाने को कहा, मेरे मना करने पर उसने पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत पिए हुए था, सास ससुर और ननद सब उसे उकसा रहे थे। उसने मुझे इतना मारा माँ कि मैं बेहोश हो गई।
8: मेरी बच्ची।

0: उन्होंने मुझ पर पानी डाला, तब मैं होश में आई तो ससुर बोले, पानी पड़ने से ठंड लग रही होगी बेचारी को, जरा आग से सेक दे रमेश। पापा, रमेश ने मुझे पीठ पर लकड़ी से जलाया।
1: भाई साहब, मैं और नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ।
2: कमांडर साहब, तैश बैठी रहती वैसी हरकत मत कर बैठना।
1: नहीं भाई साहब, मैं थाने में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, सभी को गिरफ्तार करवा कर ही रहूंगा।
3: ऐसे नर पिशाचों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

0: सुनो जी, पुष्पा पूरी तरह से टूट चुकी है।
1: 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो गुमसुम की गुमसुम है।
0: मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता।
1: अच्छा हुआ उन नरपिशाचों से छुटकारा मिल गया।
0: शिवानंद जीजा जी कह रहे थे समझौते के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे वो लोग।
1: हाँ, और राजीनामे में सब कुछ लिख कर देने को तैयार भी हो गए थे।
0: बार बार जहर थोड़े ही पी सकते हैं, परंतु अब किया क्या जाए, पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है पुष्पा की।
1: सावित्री, मैंने कुछ लोगों से कहा है कि मैं पुष्पा की दूसरी शादी कर दूंगा, बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाना चाहिए।
0: पर पुष्पा शायद ही माने।
1: सावित्री, तुम पार्वती राधा उसे समझाती रहो, एक दिन तुम सबके प्रयास जरूर सफल होंगे और फिर शहनाई बजेगी।
2: अतीत याद करके कब कभी आ जाती है बुआ। मम्मी पापा यदि बार बार नहीं कहते तो मैं कभी हाँ नहीं कहती।
3: पुष्पा, लड़की अपनी गृहस्थी में ही भली लगती है।
2: क्या इस बार ससुराल अच्छी है बुआ?
3: हाँ शायद, क्योंकि उन्होंने कोई मांग नहीं रखी है।
2: शायद अगर लालची होते तो क्या मुझ जैसी तलाकशुदा से शादी करते?
3: जवाई बाबू जरूर दयावान होंगे, औरत का दर्द समझने वाले।
4: भाई साहब,
1: हाँ,
4: आपको लड़के के पिताजी बुला रहे हैं।
1: इस समय जबकि बारात चढ़ने का समय हो रहा है। ठीक है, चलो चलकर देखता हूँ क्या बात है।
4: मैं भी चलता हूँ, किशन जी को भी साथ ले लेता हूँ।
2: बुआ, अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो मैं जहर खा लूंगी। हाँ,
1: आपने मुझे बुलाया प्रसाद जी।
5: आइए सत्यप्रकाश जी।
1: जी,
5: आपका इंतजाम देखकर प्रसन्नता है।
1: धन्यवाद, मुझ गरीब से जो बन पड़ा है आपके सामने है।
5: आप सभी कुछ ठीक दे भी रहे हैं, परंतु एक कमी हमें लग रही है।
1: कहिए, यदि मेरी सामर्थ्य में होगा तो अवश्य पूरी करूँगा।
5: मेरा बेटा शिफ्ट ड्यूटी करता है
1: जी,
5: यदि स्कूटर आप दे देते तो रात बेरात उसे लौटने में आसानी हो जाती।
1: ये आप इस समय कैसी बातें उठा रहे हैं?
4: प्रसाद जी, आप नहीं जानते, भाई साहब पर अभी पिछली शादी का ही काफी कर्जा है। किसी तरह जमीन जायदाद बेचकर ये शादी कर रहे हैं।
5: वकील साहब, ये तो एहसान फरामोशी है। आपकी तलाकशुदा लड़की से शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों को कैसे मैंने तैयार किया है ये मैं ही जानता हूँ। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी, आपको अपना मानकर ही इस रिश्ते को स्वीकारा था।
1: प्रसाद जी, आपका एहसान सर माथे पर, बस ये स्कूटर की मांग छोड़ दीजिए।
5: सत्य प्रकाश जी, जब तक स्कूटर नहीं तब तक शादी नहीं।
1: प्रसाद जी, ये जुल्म मुझ बदनसीब पर ना कीजिए, आप शादी करवाइए और भरोसा कीजिए, मैं कुछ दिनों बाद स्कूटर के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा।
5: अरे कल किसने देखा है, जो होना है वो आज और अभी होना है, वरना मैं बारात वापस ले जा रहा हूँ।
1: मैं आपके पाँव पड़ता हूँ प्रसाद जी, ऐसा मत कीजिए।
4: भाई साहब,
1: ऐसा मत कीजिए।
4: ये आप क्या कर रहे हैं, इन दहेज के लालचों के पाँव पड़ रहे हैं आप, इन्हें तो ठोकरे मारनी चाहिए। जाइए आप लोग, शौक से बारात वापस लौटा कर ले जाइए। आज स्कूटर मांगा है, कल पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। अच्छा हुआ तुम लोगों की औकात पहले ही पता चल गई। अरे तुम क्या लौटने को कह रहे हो, हम ही तुम्हें लौटा रहे हैं, वो भी धक्के मारकर। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से।

0: ओह, मैं कहाँ हूँ?
1: आप अस्पताल में हैं। मुझे डॉक्टर पीयूष कहते हैं।
0: मुझे आपने क्यों बचा लिया डॉक्टर साहब?
1: मैंने बचा लिया? मैं बचाने वाला कौन होता हूँ? बचाने वाला तो भगवान है। मैंने तो जो पढ़ा उसका आपके ऊपर प्रैक्टिकल किया तो आप बच गई।
0: जहर तेज नहीं था शायद?
1: जहर बहुत तेज था देवी जी, परंतु ये मेरा सौभाग्य था या आपका कि आप टकराई भी तो एम्बुलेंस से। पुष्पा जी, मैं आपकी पूरी कहानी जान चुका हूँ। यदि आप हाँ कहें तो मैं आपका हाथ थामने को तैयार हूँ।
0: क्या
1: जी, आपके सभी रिश्तेदारों से मैं बात कर चुका हूँ।
0: मेरे बारे में इतना जानकर भी?
1: हाँ, सब कुछ जानकर ही मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ।
0: आप भावुकता में बहकर फैसला कर रहे हैं।
1: नहीं पुष्पा जी, ये भावुकता नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आदर्श ही मेरा ओढ़ना बिछौना रहे हैं। आज आपकी कहानी सुनी तो मेरे मन ने कहा कि पीयूष, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है।
0: डॉक्टर साहब, ये आपकी नहीं, मेरी परीक्षा की घड़ी हो गई है। मैं ना हाँ कर पा रही हूँ, ना इनकार कर पा रही हूँ। कैसे दुविधा में भगवान तूने मुझे डाल दिया।
1: पुष्पा जी, मैंने सुना है कि सौभाग्य एक बार दरवाजा खटखटाता है और बदकिस्मती बार बार। आज जब किस्मत दरवाजे पर खड़ी है तो आप संकोच कर रही हैं।
0: डॉक्टर साहब, मैं दो बार से चली जा चुकी हूँ, इसलिए खुशी के हर मौके पर मुझे लगता है कि कहीं दुख खुशी का मुखौटा लगाकर तो नहीं आया।
1: पुष्पा जी, देखिए मेरी तरफ, मेरे चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं है। हाँ, आपका ट्रीटमेंट करते समय जरूर एक कपड़ा मेरे चेहरे पर था, वो डॉक्टरों के लिए जरूरी होता है, कृपया उसे मुखौटा ना समझें।
0: डॉक्टर साहब, इतनी सीरियस बातों में भी आप हंसने का पहलू निकाल लेते हैं।
1: हंसने से आधी तकलीफ दूर हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, किस्मत ने मेरे साथ छल किया है कि मैं हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी भूल गई हूँ।
1: आपकी हाँ हो जाए तो देखना पुष्पा जी, मैं आपको कह कहे लगाना सिखा दूंगा।
0: डॉक्टर साहब।
1: अरे ये क्या डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? मेरा नाम पीयूष है, पीयूष कहकर बुलाइए। डॉक्टर साहब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मरीज से बातें कर रहा हूँ।
0: पीयूष जी, हाँ? आपकी बातें सुन सुनकर मैं और हीन भावना से ग्रसित होती जा रही हूँ। कहाँ आदर्श के शिखर पर आप, और कहाँ तलाकशुदा लेबल लगाए मैं।
1: जरा देखूं तो, अरे भाई मुझे तो कहीं कोई लेबल नहीं दिख रहा। मुझे तो आपके माथे पर अपनी तकदीर लिखी दिख रही है, वो भी कंप्यूटर पर टाइप की हुई।
0: अच्छा हुआ पीयूष जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर टाइप की हुई नहीं कही।
1: क्यों?
0: ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन ही मेरी दुर्गति का कारण बने हैं। पीयूष जी, आपने पूछा नहीं कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और फोटोकॉपी मशीन मेरी दुर्गति का कारण बने थे?
1: नहीं पुष्पा, मुझे ऐसी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है जो तुम्हारी दुर्गति का कारण बनी। मुझे बताना है तो वो बातें बताओ जिन पर कभी तुम खिलखिलाई थी मुझे।
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक क्या ऐसा होगा। लेखिका थी श्रीमती मधुरा जैन और प्रस्तुतकर्ता राकेश टांडियाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी।

0: मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 होने को है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजनी में लीजिए सुनिए पंडित M.S. गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग है भोपाली। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है और तबले पर संगत की है लालजी गोखले ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित MS गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग था भोपाली। तबले पर संगत की थी लालचीर गोखले ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम

उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा